سبحانه.

0: पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट ॿुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज़ फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज़ हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारन में कद जो न वधण मर्दनि ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-8051।
1: अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अल हबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं।
2: बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
3: क्या देख रहे हो, ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो।
1: बाहर से भेजी गई रकम बैंक अल हबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600cc कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 578 शहरों में बैंक अल हबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अल हबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं।
3: तो भाई साहब क्या समझे।
2: बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
0: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
4: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंग सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारियर दस्तियाब आई।
0: हाँ अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी।
4: राब्ते लाए प्रोपराइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372-0242460100।
5: मां खाधो गरम करे थी वठा।
6: पुद थकल थकल पे लगे घणी खरेता
5: तवा जो पुट सुमई न थो पूरी रात मां त खीर प्यारे प्यारे थकी थी पवा।
7: मेरी थकन को भी तेरे
6: तू हल वे मां चा तू

0: हे वट
1: एड़ी शयूं खांदी कर सेहत ठीक रहंदी
2: तवा खाओ
1: ना ना तू खा तू ना खांदी ते मां के खाइंदम
3: तेरा ख्याल मेरी जिंदगी का सबसे
4: खीर पियण वाली माओ जी बेहतरीन विजा भाव ए बार इन्हीं जो हक है ही पैगाम कश फाउंडेशन ए कैनेडियन गवर्नमेंट जी तरफा पेश
5: क्या देख रहे हो ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार साथ ही मोटरसाइकिल्स स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं तो भाई साहब क्या समझे
6: बैंक अलबीब रिश्ता भरोसे
7: अस्सलाम वालेकुम अदा
8: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
7: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
8: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
7: न अदा
9: यार आज कल शरण तोड़े गोछन में जी मेरा पर एफएम 94 ही हले थो मो पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली नथी चवे
7: मजे दुकान जी बेड हलंदी
8: हां दा कारोबारी इश्तेहारत आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
7: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस बुदा
9: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
8: رابطے لائے حاکم علی جس کہانی
10: 03013992836
11: مہراپور کے ہو تو آواز بھی مہراپور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94
1: हे वट एड़ी शयूं खांदी कर सेहत ठीक रहंदी

जी हाँ, असांजे अॼु जो जेको सवालु आहे असांजो, त हिकु मिंट में बिजली जी रफ़्तार केतिरी आहे, तव्हांखे ॿुधाइणी आहे त केतिरो तेज़ वेंदी आहे, केतिरो तेज़ पहुचंदी आहे हिकु मिंट में। तव्हां ॿुधाए सघो था असांखे मोबाइल जे राइट ऑप्शन में, यानी SMS ज़रिए तव्हां असांखे सवाल जवाब ॿुधाए सघो था। मैसेज करण जो तमामु आसान तरीक़ो आहे, मोबाइल जे राइट ऑप्शन में वञो, LRK लिखी स्पेस ॾियो ऐं पंहिंजो नालो, पंहिंजे ॻोठ जो नालो, सवाल जो सही जवाबु लिखी करे 888 ते तव्हां सेंड करे सघो था। ऐं तव्हां असांजे प्रोग्राम जेकॾहिं फेसबुक ते ॿुधो पिया या ॿुधणु चाहियो था त GAFM88 जी ID ते तव्हां असांखे फेसबुक ते बि तव्हां सवाल जो सही जवाबु मोकिले सघो था। ऐं 10 बजे खां असांजी मोबाइल स्टूडियो में आन हूंदी, तव्हां मोबाइल नंबर ते बि पंहिंजो सवाल नोट कराए सघो था। पंहिंजो नालो असांजो नंबर आहे 0332-1322-88। साईं जा प्यार दिल जो पाणी आहे, प्यार दिल जी खोराक आहे, पाणी बि अहिड़ो जो दिल खे अगरि प्यार जो पाणी न मिले त दिल जो गुलिस्तान कॾहिं बि सरसब्ज़ ऐं शादाब न थिए, खोराक बि अहिड़ी जो ॾींहं में 10 भेरा मिले त बि दिल जो ड्रहो न थिए। प्रिय जे प्यार ऐं सूंह मां ई दिल ड्रपंदी आहे ऐं नई अखियूं, पोइ छो न हिन ज़िंदगी में ख़ुशीअ जो अहसासु हुजे या मौत जो भउ, दिल दिल ई आहे।

हा जी साईं मुंहिंजा, असांजो अॼु जो जेको सुवालु आहे त हिकु मिंट में बिजली जी रफ़्तार केतिरी आहे। जी हा, उमेद त तव्हां सुवालु नोट कयो हूंदो ऐं असांजो सुवालु इहो आहे त बिजली हवाले सां त बिजली जेका तेज़ रफ़्तार आहे हिकु मिंट में केतिरी आहे। जी हा, तव्हां असांखे सुवाल जो सही जवाबु एस एम एस ज़रिए ॾेई सघो था। असांजो एस एम एस करण जो आसान तरीक़ो आहे, मोबाइल जे राइट ऑप्शन में वेंदव, उते एस एल आर के लिखी तव्हां स्पेस ॾींदव, उन बाद पंहिंजो नालो, पंहिंजे ॻोठ जो नालो, सुवाल जो सही जवाबु लिखी करे तव्हां 888 ते सेंड कंदव। ऐं जेकॾहिं तव्हां फेसबुक ते प्रोग्राम ॿुधो पिया या ॿुधणु चाहियो था त असांजी जी एफ एम 88 जी जेका आई डी आहे, जेको असांजो फेसबुक जो पेज आहे, तव्हां उन ते बि पंहिंजे सुवाल जो सही जवाबु मोकिले सघो था। ऐं तव्हां असांखे लाइव कॉल ज़रिए असांजे स्टूडियो में मोबाइल आन थींदी 10 बजे न्यूज़ खां बाद में, तव्हां असांखे सुवाल जो जवाबु लिखाए सघो था। असांजो नंबर आहे 0332-1322-88। साईं मुंहिंजा, हीअ अखियूं, हीअ नज़रूं, हीअ दीदूं सदाई मुसाफ़िरनि जी सफ़र में रहंदियूं आहिनि, हीअ हर वक़्तु मुतलाशी रहंदियूं आहिनि, कॾहिं कंहिं ख़ूबसूरत चीज़नि जूं त कॾहिं किन ख़ूबसूरत चहिरनि ऐं अखियुनि जूं। हीअ अखियूं, हीअ नज़रूं, दीदूं पंहिंजे प्यार, पिरी ऐं ख़ूबसूरत अखियुनि जूं ॻोल्हाऊं हूंदियूं आहिनि। अखियूं सदाई सूंहं ऐं प्यार जूं प्यासियूं हूंदियूं आहिनि, सूंहं अखियुनि जो नूर वधाए छॾींदी आहे। जेसीं ताईं अखियूं को ख़ूबसूरत चहिरो न ॾिसनि त बेचीन जे रेगिस्तान में भिटकंदियूं वतनि, ऐं अगरि उहे दीदूं को दिलबर पसंदि त आशूरनि में बि ख़ुशियूं।

हा जी असमैन सवाल आहे असांजे अॼु जे प्रोग्राम जो त बिजली जी रफ़्तार हिकु मिंट में केतिरी आहे। जी असमैन, ऐं अव्हां चवंदा आहियो त आलमी ॾींहुं नोट न करायो, अॼु आलमी ॾींहुं मूंखे कोन लधो पर असांखे इहो ई लभी पियो त हिकु मिंट में बिजली जी तेज़ रफ़्तार केतिरी आहे। तव्हां असांखे ॿुधाए था सघो था, एस एम एस ज़रिए ॿुधाए सघो था, तव्हां असांखे फेसबुक जे ते बि तव्हां असांखे सवाल जो जवाबु ॿुधाए सघो था, ऐं तव्हां असांखे मोबाइल नंबर ते बि पंहिंजो सवाल जो सही जवाबु ॿुधाए सघो था। असांजो नंबर आहे 0332231322।

0: सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान जे तजवीज़ के रद्द कर छो। सोशल मीडिया से जारी मुख्तसर पैगाम में सदर ट्रंप है ईरान जो जवाब पढ़ो है, नाले मादर ईरानी नुमाइंद जवाब मुख्य पसंद ना आयो। मामले ते अवां जी ध्यान जी मेहरबानी। उन अग मीडिया से गाल बोल कंदे सदर ट्रंप ईरान के एटमी हथियार रखने की इजाजत न दी। गेम खेली रहा है पर हाँ केर न है, अमरीका जल्द उते पहुंची वेंदो। हम जी वेझो वन रह छींदी वो कदें न चो है। ईरान खिलाफ फौजी कार्रवाई खत्म थी वही है, कुछ हदफ बाकी बिन हफ्त अंदर हमला कर सकूं था।

0: تربیت کے لیے آج ہی مسح اسکول سسٹم مہراپور کا وزٹ کریں۔ مزید رابطے کے لیے ڈاکٹر الطاف حسین میمن، مینیجنگ ڈائریکٹر مسح اسکول سسٹم، 03000002734، نثار احمد میمن پرنسپل مسح اسکول سسٹم مہراپور، 03013865453۔
1: अहाजो चेहरो बेजान आई डल लगे थो, हाने वक्त आहे चमकण जो। हेमे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम सा कुदरती जुजन सा तैयार कयल, जेका दे कुदरती निखार, साफ नरम आई रोशन चेहरो, पहरे ही इस्तेमाल में फर्क महसूस करियो। हेमे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम तहा भी चमकायो पहजो चेहरो, जीए होजे हीरो। हेमे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम, चेहरे जी असल चमक जो राज।
2: खुशखबरी हाँ अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज खां इशा जे नमाज ताईं आई हर आचर ते सुबुह जो 9 वगे खां रात 8 वगे ताईं मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज़ रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहराबपुर। वधीक राबते जे लाइ 03000005569, 03003385569।
1: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहराबपुर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहराबपुर, नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस, हालाणी रोड, मेहराबपुर। राब्ते जे लाइ 03200018003।
3: अस्सलाम वालेकुम अदा।
4: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
3: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
4: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
3: न अदा।
5: यार आज कल शहरन तोड़े गोछन में जी मेहराबपुर FM 94 ही हले थो। मो पंजो दुकान खोलियो तो FM मेहराबपुर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
3: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
4: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
3: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस बुदा।
5: ऑफिस जी मेहराबपुर FM 94, नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालाणी रोड, मेहराबपुर।
4: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी,
6: 03013992836।
7: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है, सुनते रहो जी FM 94।

0: It's 10:15 a.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Diya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चौक पर एतमाद अइमा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कल रेट ते दस्तियाब है सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी कंप्यूटराइज जैपनी स्टैचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वने थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राबते जिले आसिम हुसैन आराई 0307359210
3: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो GFM 94
4: जी हाँ साईं मुंहिंजा प्रोग्राम रोशन सुबुह में वापसि अची चुका आहियूं ऐं प्रोग्राम रोशन सुबुह मां ॿुधो पिया GFM 88 जे नेटवर्क तां ऐं साईं मुंहिंजा असांजे अॼु जे प्रोग्राम में असांजो सुवालु आहे त बिजली जेका तेज़ रफ़्तारी आहे बिजली जी उहा हिकु मिंट में केतिरी आहे जी हा असांजो सुवालु अव्हां खां इहो आहे त बिजली हिकु मिंट में केतिरी तेज़ रफ़्तार सां हले पई ठीकु आहे मुंहिंजा अव्हां असांखे ॿुधाए सघो था पंहिंजो SMS ज़रिए फेसबुक ज़रिए ऐं मोबाइल नंबर ते मोबाइल नंबर आहे 0333221328 ऐं साईं मुंहिंजा ॻाल्हि कंदासीं सीज़न जी त हर कमकार जी बि हिकिड़ी सीज़न हूंदी आहे मौसम हूंदी आहे पर जेका शइ सीज़न न हुजे त असां उन ॻाल्हि खे कंदासीं अणमुदायती शइ यानी सीज़न खां बिना त ॾिसो हिन वक़्तु जेके माण्हुनि जे ख़ुशियूं अलाह साईं हर इंसान जे घर में ॾे असांजी दुआ आहे सभिनी भाइरनि खे पर जेका हिन वक़्तु सीज़न शादियुनि जी जेका किथे किथे आहे त उहा पंहिंजो मालिकनि खे त बेज़ार करे थी पर जेके ॼाणी हूंदा आहिनि जेके सॾु वारा हूंदा आहिनि उहे बि परेशान हूंदा आहिनि गर्मियुनि में त असां हिन शादीअ सॾ ते कीअं वञूं गर्मी में गर्म कपिड़ा कीअं पायूं ऐं ॿाहिरि गर्मीअ जी लुख पई लॻे बाहि पई वसे ऐं वेतर जेकॾहिं माण्हू खाधा गर्म खाईंदो त वरी जेको आहे सो इंसान जिस में अञा पाणीअ जी उञ वधीक लॻंदी ऐं माण्हू परेशान थिए पियो पर बहरहाल जेको माण्हू

शादी करे पियो त हुन जी हिकिड़ी ज़िंदगी जी जेका नई शुरूआत थींदी आहे। ऐं कंहिं फ़िलासफ़र जे कौल जीअं त हर रोज़ नए सर नओं जनम वठे थी नई ज़िंदगी। ऐं तॾहिं कंहिं दानश्वर चयो आहे त अकुलमंद माण्हूअ लाइ हर ॾींहुं नओं ॾींहुं आहे। ऐं राति जो सुम्हण वक़्तु जॾहिं असां पंहिंजे ज़हन में हिकु खाको तयारु कयूं था त सुभाणे असांखे कहिड़ा कहिड़ा कम करणा आहिनि, पर असां रुगो इहो सोचींदासीं त असांजी शादी कॾहिं थी थिए, असांजो सुभाणो कॾहिं थो थिए। इहो इंसान पियो सोचींदो आहे, नौजवान जी इहा ज़हन में ॻाल्हि पई हूंदी आहे। ऐं ॻाल्हि कंदासीं कम जी अहमियत मुताबिक़ उनखे हासिलु कंदा वञूं त जेकर ज़िंदगी में हिकु आसानी ऐं तरतीब पैदा थी पवंदी आहे, तरतीब सां ज़िंदगी गुज़ारण करे हर माण्हू परेशान खां बची सघे थो। इन जे करे कोशिशि कयो, पंहिंजी नई ज़िंदगी में तरतीब ठाहियो, इंडेक्स ठाहियो ऐं उन सां गॾु हलो, वक़्त जी रफ़्तार सां गॾु हलो। भले शादियूं कयो पर पंहिंजे गर्मियुनि खां पंहिंजो पाण खे बच। हीउ ख़ूबसूरत सहिरो अवां दोस्तनि जी नाव जेके हिन वक़्तु शादियूं करे रहिया आहिनि, जंहिंजी सोचुनि में आहिनि या जंहिंजी अॼु शादी आहे, उन लाइ असांजे तरफ़ां ख़ूबसूरत सहिरो समीन कंवल जो आवाज़।

साईं, मुंहिंजा इंसान जी ज़िंदगी में सिहतमंद रहण बि ज़िंदगी जे लाइ ज़रूरी आहे। सिहत असां पंहिंजी पाण सही करे सघूं था। गैर मयारी शयूं घटि इस्तेमालु करियूं, वक़्त सिर खाधो वापरायूं, ॾींहं में 10 खां 12 गिलास पाणी पीयूं। पाणी जिस्म में मौजूदु चर्बीअ खे ख़तमु करण में मदद ॾिए थो ऐं खाधे जी ख़्वाहिश खे घटाए थो। घणे मक़दार में पाणी पीअण सां जिस्म में मौजूदु ज़खीरो फिल्ड नेकाल थी वञे थो। ऐं पुराणे दौर जा माण्हू तंदुरुस्तु रहंदा हुआ, छाकाणि त उहे हिकु शहर खां ॿिए शहर ताईं पंधु सफ़र कंदा हुआ। जॾहिं तव्हां तकिड़ो पंधु करियो था, तव्हां पंहिंजे पाण में महसूसु कंदव त तव्हां पाण में हल्काई ऐं तकिड़ाई महसूसु कंदव। तव्हांजे साह खणण जो अमल तकिड़ो ऐं गहिरो थींदो। ऐं सुठी सिहत लाइ खाधा मुख़्तलिफ़ ज़रूरी आहिनि, पर खाधनि जी चूंड खे हिकु ई बैठक दौरान महदूद करियो ऐं सब्ज़ियूं घणियूं वापरायो। हिन मौसम में पाणी तमामु घणो पीओ ऐं पाण खे हिन गर्मीअ खां, हिन उस खां तमामु जेको आहे सो बचायो त बहितरु आहे।

0: It's 10:30 AM. This time check is brought to you by
1: Hame Diamond Glow Bleach Cream, जो deep clean करे और दे 4 गुना brightness, चमक ऐसी diamond skin जैसी. Hame Diamond Glow Bleach Cream.
2: Mehran Iron Store Halani Wholesale Depot, a name to be trusted.
3: Sariya Garden Tier Angle Channel Patti Lohi Darwaza Silver Ja Chong Cement Reti Crash Ai Rang Wagera Bazar Kham Bariya Dastyab Ahin
2: Hane Yacho Mehran Iron Store Nazd Baloch Petrol Pump National Highway Halani
3: Rabte Lai Proprietor Gulam Nabi Mughal 03003204372 Ai 02424601 00.
4: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवां जी स्किन के बनाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म ऐं डीए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डीह जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
2: खुशखबरी पैगामो वदन बोटा पेट्रोल पंप रोड मेरा इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमबी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर एंड सोम

0: वठनी पवंदी माहिरे अमराज नक कन गलो पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट ॿुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज़ फॉलिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज़ हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारनि में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-9196-851
1: अस्सलाम वालेकुम अदा
2: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
1: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो छा कजे
2: अदा दुकान जी मशहूरी कराई अथई
1: न

0: यार अॼुकल्ह शहरनि तोड़े ॻोठनि में जीअं मीरापुर FM 94 ई हले थो। मूं पंहिंजो दुकानु खोलियो त FM मीरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार अहिड़ो कामयाब वियो जो एड बंद कराइण ते दिल्ली नथी चवे।
1: मुंहिंजे दुकान जी भेट हलंदी?
2: हा दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मीलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइज़िंग हलंदी आहे।
1: अदा जल्दी कर, मूंखे मुंहिंजी एड्रेस ॿुधा।
0: ऑफिस जी मीरापुर FM 94, नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालाणी रोड, मीरापुर।
2: राबते लाइ हाकिम अली जिस्कानी,
3: 03013992836।
4: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

ॾींदासीं, पर पहिरियों अवां ताईं पहुचाईंदासीं नवीद नाज़ भट्टीअ जो ग़ज़ल आहे, यार हर हलका बाज़ी खटी था सघो। नवीद नाज़ भट्टी जो ग़ज़ल, यार हर हलका बाज़ी खटी था सघो, कुझु क़दम पोइते जे हटी था सघो। तोखे बीठल सदाईं हा मां मिलंदुसि हुते, पंहिंजे घर जे निहारे घिटीअ मां था सघो। सिंध जे उन मंझां पए थी ख़ुशबू अचे, सिंध जी उन मंझां पए थी ख़ुशबू अचे, मुंहिंजी शाजी बदन जी मिटी था सघो। मां त मेरा जहिड़ो अक्स नाहियां मथे, हा विझी का नज़र बि चिटी था सघो। नाज़ आहे अकेलो अॻे खां घणो, नाज़ आहे अकेलो अॻे खां घणो, हा करे राह में ई फिटी था सघो। यार हर हलका बाज़ी खटी था सघो, कुझु क़दम पोइते जे हटी था सघो।

खां खालिक लाशारी इक़बाल लाशारी ऐं मीरपुर ख़ासि खां ई यासमीन मलक बि प्रोग्राम ॿुधे पई ऐं वकार जतोई सुधीर रमन जतोई बिलावल सनावला ज़ाकिर हुसैन ऐं जावेद जतोई पीरशेर खां प्रोग्राम ॿुधनि पिया ॿाहिरनि जी वॾी महिरबानी उस्मान आराई मीरापुर खां इनाम ॾिनो बंबरो ॻोठ नारो लॻे सखर खां ज़ोहिब कटबर ऐं ज़ैनलाब्दीन रहमतपुर लाड़काणे खां नज़ीर मंगरियो रोहिड़ी खां आसिफ अली चाचड़ वासिफ अली बुगटी लाड़काणे खां क़ुर्बान अली ख़ासकेली झंडो मरी खां ऐं हाजी इमदादुल्लाह दायो सैफुल्लाह दिलबर जवाद यासिर दायो लोहर कॉलोनी लाड़काणे खां ऐं असांजो भाउ मंज़ूर हुसैन जलबाणी रसूल बख्श जलबाणी मोहसन अहसन जलबाणी ऐं नंढड़ी पोपरी उन सां गॾु आहे ॻोठु गाज़ी ख़ान जलबाणी खां ॿाहिरनि जी वॾी महिरबानी ऐं असांजा कुझु दोस्त आहिनि रे ॻोठु नूरसेन तुनियो बदीन खां भाउ प्रोग्राम ॿुधंदा हुन जी वॾी महिरबानी ऐं मिठी थरपारकर जे ॻोठु जगी जो तड़ खां रमेश कुमार कोहली ऐं रामचंद प्रोग्राम ॿुधनि पिया जेकाबाद खां मोहम्मद मीरण जखराणी मोहम्मद ख़ान कुंभार वफ़ा जमाल कुंभार अहमद ख़ान कुंभार हालेपुटा स्टाप मीरपुर ख़ासि खां ऐं ईदगाह जतोई बखर खां मोहम्मद हफ़ीज़ रहमान ऐं मुल्तान खां गुल यासीन ऐं वॾी महिरबानी ॿाहिरनि जी ऐं रेहान ख़ान बखर खां मोहम्मद हफ़ीज़ रहमान ॿाहिरनि जा लख कुर्ब त साईं मुंहिंजा ख़ूबसूरत नगमो आहे अवां दोस्तनि जे नाम पिया कयूं गॾिजी पिया इंजॉय कयूं।

अॼु इहा साईं मुंहिंजा ऐं प्रोग्राम जा आख़िरी लम्हा आहिनि। आख़िरी लम्हनि में कुझु दोस्तनि जा अञा नाला अव्हां ताईं पहुचाईंदासीं। ॻोठ हरसा जी गढ़ी कोरकाणियुनि खां सूमर फ़क़ीर कोरकाणी, अरबेलो कोरकाणी, यारमंद कलोड़ा कॉलोनी लाड़काणे खां इरशाद महेसर, एजाज़ अली कलोड़ो, डॉक्टर रिज़वान अली कलोड़ो, माजिद अली जतोई, निसार जतोई, नारा स्टाप सखर लग सब्ज़ी मंडी खां एजाज़ अली जूणे जो, मुनीब रहमान जूणे जो, मुजीब रहमान जूणे जो ॻोठ छुटो मक्सी लॻे कंगन खां, सिकंदर अली मक्सी, अकबर खान मक्सी ऐं ॻोठ मोहम्मद कासिम चांडियो खां अली अकबर चांडियो, मोहसिन अकबर, अहसन अकबर, फहद अकबर ऐं अहद अकबर, शादाब चांडियो, ॻोठ हसू जतोइन खां मोहम्मद मूसा जतोई, यार मोहम्मद ऐं नसरुल्लाह जतोई, ॻोठ कंगन खां गुलाब खान कुंभर, शोएब अली ऐं ग़ुलाम रसूल कुंभर, ॻोठ अहमद खान लाशारी खां नियाज़ अली लाशारी, नंढड़ो शाहज़ेब लाशारी, ॻोठ मौलिद ने माशी खां ज़मीर हुसैन सोलंगी, मुख़्तियार अली, ज़हीर अब्बास सोलंगी। त समन ही आख़िरी नगमो अव्हां दोस्तनि जी नाम।

अजिया समय न मास्टर मंज़ूर जे इन ई ख़ूबसूरत नगमे ते प्रोग्राम रोशन सुबुह जो वक़्तु पहुची पियो पंहिंजी पुॼणी ते। इजाज़त ॾींदा पंहिंजे मेज़बान नेमत अलाह जूणी जो खे, तेसीं ताईं वरी हयाती रही त मुलाक़ात तव्हां सां ज़रूरु थींदी। तेसीं ताईं अलाह निगहबान।

0: It's 11 a.m. This time check is brought to you by
1: Bank Al Habib. Rishta Bharose Ka.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: त ईरान खिलाफ़ फ़ौजी कार्रवाई ख़त्म थी वई आहे, कुझु हथ बाक़ी आहिनि, ॿिनि हफ़्तनि अंदरि वधीक हमला करे सघूं था।

0: परडेईरांदड़ पाकिस्तान अप्रैल महीने में 53 करोड़ डॉलर पाकिस्तान मोकलिया। स्टेट बैंक पाकिस्तान चवणाए तो रकम अप्रैल 2025 की भेट में 11% वधिक है। मार्च महीने में 83 करोड़ अरब डॉलर मोकलिया व्या हुआ। शाहराह भुट्टो ईद उल उज़ा का अग खुली वेंदी, टूल टैक्स पर बीणो थी वेंदो। शाहराह भुट्टो के प्रोजेक्ट डायरेक्टर नियाज सुमरो शाहराह भुट्टो ईद उल उज़ा का अग ट्रैफिक लाइ खोली वेंदी। मनसूबे में एक पुल तामीर हेठ है, पुल मुकम्मल न थी तो मुतबादल रस्तो डेई भी शाहराह भुट्टो ट्रैफिक लाइ खोली वेंदी। मुकम्मल खुलण का पोए टूल टैक्स भी बीणो थींदो। मनसूबे में 60 अरब रुपया खर्च थिया। रतदेरो में स्कूल वेंदड़ नीगर मथा ट्रैक्टर ट्राली चढ़ी वही। रतदेरो बाईपास रोड से 8 साल अब्दुल मालिक ट्रैक्टर ट्राली हेटा चिबाड़ की फौत थी पो। पुलिस ट्रैक्टर और ट्राली कब्जे में वही ड्राइवर के गिरफ्तार कर वरतो। बेहड़ में अब्दुल अजीज जोड़े जो लाइब्रेरी 6 महीनों का बंद पियल। शागिर्दन एहतजाज किया, लाइब्रेरी बंद करण तालीमी दुश्मनी है। महीनों का लाइब्रेरी बंद है, लाइब्रेरी खोले शागिर्दन के पढ़ाई लाइ पुरसकून माहौल फराहम किया वे। मासूम बाड़ी उजाला परवीन की बाजियाबियल है। मेयर में अगवा थियल मासूम बाड़ी उजाला परवीन के अगवा थींदे 28 दिन गुजरी वह। वारसन सिविल सोसाइटी के बुक हड़ताली कैंप जारी, पुलिस जुड़ियल जे आई टी एप को नतीजो न डनो। उजाला परवीन सोलंकी जो वालिद सुप्री प्राइमरी उस्ताद शमसुद्दीन सोलंकी धीअ लाइ लुड़क लाड़े वेठो। सन चवणाए त 28 ॾींहं गुज़री विया आहिनि, पर पुलिस रुगो ख़ातिरियूं कराइण में पूरी आहे। नियाणी बाज़ियाब कराए इंसाफ़ फराहम कयो वञे। ऐं नाज़रीन कंबर शिदात कोड़ वासी पेनू फ़क़ीर पीर सन जो दरिया ख़ान मरियम अल्लाह शत 58 साल क़ुर्बान प्रगड़ जो लाश दरिया ख़ान मरीज रेलवे ग्राउंड में मिलियो। पुलिस जो चवण आहे तो फोती के वारसन के इतला दई लाश अस्पताल मुंतकल किया है।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: सिंध डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर रफीक अहमद कंसल्टेंट डेंटल सर्जन, BDS, RDS, CNO, CRTHO, HSA इस्लामाबाद। असां वटि बगैर तकलीफ़ जे दंद कढ़िया ऐं नवां दंद लॻाया वेंदा आहिनि। हर कम जदीद टेक्नोलॉजीअ सां कयो वेंदो आहे। जरासीम खां पाक औज़ार, वक़्तु सुबुह 8 वॻे खां मंझंदि 1 वॻे ताईं। पतो नज़्द गुल होटल हालाणी, राब्ते जे लाइ 0301

0: देखिए नई ड्रामा सीरियल हम राही 27।
1: It's 11:15 AM.
2: This time check is brought to you by White Ish Beauty Cream, glowing skin jo raaz, a product by Biocon International Pakistan.
3: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94।

चाहत से फतह करते हैं लोगों के दिलों को, चाहत से फतह करते हैं लोगों के दिलों को। हम ऐसे सिकंदर हैं जो लश्कर नहीं रखते। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। यू आर ट्यूनिंग इन टू रियो रेडियो FM 88 और साथ ही साथ प्यारे से चेहरा, मीठी सी आवाज, मासूम से दिल, स्वीट से हंसी, परफेक्ट पर्सनालिटी, खुश मिजाज अंदाज, मुझे कहते हैं आरजे रुखसार सिंध की आवाज। हाउ आर यू, कैसे हैं आप? आई होप कि जी जहां जहां भी मौजूद है वो कुछ टिप टिप से सच कूल लाइक साउंड एकदम स्ट्रांग हल के साथ मुझे सुन रहे हैं। जहाँ जहाँ भी मौजूद है बिल्कुल मेरे साथ साथ मौजूद हैं और मेरा पूरा पूरा साथ देने के लिए पूरे पूरे तैयार हैं, पूरे पूरे एक बजे तक, क्योंकि आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है जो कि आप सुनते हैं एवरी मंडे टू थर्सडे फ्रॉम 11 to 1 PM आपका और मेरा साथ रहता है और ये खूबसूरती वाला खूबसूरत सा साथ जो कि आज भी जारी और सारी रहेगा पूरे पूरे एक बजे तक। प्रोग्राम में हम सबसे पहले वक्त की बात करेंगे तो जी वक्त हुआ जाता है 11:22 जो कि पाकिस्तान का म्यारी वक्त है। आप तमाम से लोगों की घड़ियों में बज रहा है और इसके अलावा वो लोग जो कि इस वक्त हमें ड्राइविंग करते वक्त सुन रहे हैं, चाहे आप बस में है, ट्रक में है, रिक्शा में है, कार में है, बाइक पे है, जिस पे भी जहाँ भी जा रहे हैं आपको कहेंगे हैव अ सेफ सेफ जर्नी बेटर देन एवर। अपनी गाड़ी और अपने गुस्से की स्पीड को हमेशा अपने कंट्रोल में रखिए और ड्राइव कीजिए बिल्कुल सेफली। बफजली खुदा खैरियत मौजूद और तवक्कुल खुदा खैरियत मतलूब।

0: It's 11:30 AM. This time check is brought to you by
1: Heme Diamond Glow Bleach Cream. Kudrati jizan sa tayar kayal. Jeka de kudrati nikhar. Saaf, naram, ay roshan chehro. Heme Diamond Glow Bleach Cream.
2: खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वदन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरा पर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम बी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाब शाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाब शाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर सूमर से सुबह दहें का शाम पंजे वगे तई मरीजन जो इलाज कंदा हर जुमे छंछर आचर से बगैर फीस के चेकअप कर याद रखंदा मरीजन के दवा स्टोर दा वठनी पौंदी माहिर अमराज नक कन गलो पुरानो नजलो निचो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंग टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन औरतुन में वजन जो न वधण उन्हें सभी बीमारियों जो कामयाब इलाज कयो वञे तो राब्ते लाए 0301-96-8851
1: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
3: बैंक अल हबीब रिश्ता भरोसे का
4: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडिएंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट हाणे थियो ख़ूबसूरत थियण वधीक आसान वाइट एश ब्यूटी क्रीम ख़ूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप वाइट एश ब्यूटी सोप सा मिले चमकदार निखार ताजगी सा गड वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
5: अस्सलाम वालेकुम अदा
6: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
5: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
6: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
5: न अदा
7: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर एफएम 94 ही हले थो मो पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
5: मुझे दुकान जी बेड हरंदी
6: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
5: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
7: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नर्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
6: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
8: 0301-399-2836
7: आई मोहम्मद उमेर गोरी 0319-1557-724
9: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी एफएम 94

0: मैसेज ऑप्शन में जाइए, एस के आर टाइप कीजिए, स्पेस कीजिए, मैसेज टाइप कीजिए, सेंड कीजिए 8881 पे। कमेंट करने के लिए हमारा फेसबुक पेज होगा, दैट इज FM88GA Sakhar। FM88GA Sakhar के पेज के ऊपर आने के बाद आपको मिलती है जिंदगी गुलजार है की पोस्ट। उस पोस्ट के नीचे जो कि आपको नजर आ रही होगी पेज के ऊपर पहली पोस्ट, ठीक है, जो कि आपसे ठीक थोड़ी देर पहले पब्लिश की गई है, उसके नीचे आप लोग कमेंट्स को ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। 19 मिनट पहले ये पब्लिश की गई है, उसके नीचे आप लोग कमेंट्स को ड्रॉप कर सकते हैं एंड कॉल कर सकते हैं। हमारा सेगमेंट से लगाओ गाना सुनाओ, फर्स्ट कॉलर हम लेने जा रहे हैं 03000113488। हेलो हेलो
1: हेलो अस्सलाम
0: वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
1: अस्सलाम वालेकुम मैम।
0: वालेकुम अस्सलाम, आवाज आ रही है मेरी आपको?
1: जी जी मैम आ रही है, स्वागत आपके
0: आ रही है। ओके, प्रोग्राम सुन रहे हैं सागर भाई?
1: जी जी मैम प्रोग्राम तो सुन रहे हैं,
0: प्रोग्राम सुन रहे हैं। अच्छा जबरदस्त प्रोग्राम सुन रहे हैं। मुझे बताइए कि कौन सा गाना लेकर आए आज?
1: गाना सुना रहा हूँ, गाना वही सुना रहा हूँ मैंने सुना था आपको।
0: अच्छा तो मुझे याद थोड़ी है, दोबारा सुना दे।
1: मैं तेरे अजनबी शहर में मुझको आवाज दे, मुझको आवाज दे। मैं तेरे अजनबी शहर में
0: ओके वेरी नाइस। ओके किसी को डेडिकेट करना है?
1: हाँ जी मैम डेट कब करना है? डेट कर रहे हैं शौकत मुरानी,
0: जल्दी जल्दी,
1: और राधा मारवाड़ी और सबलोक मारवाड़ी और प्रेमी सागर मैं और मोहम्मद हमजा अंसारी और कुर्बान अली कुमरो साहब।
0: ओके जी थैंक यू, अल्लाह हाफिज।

0: ओके जी, नेक्स्ट कॉलर लेने जा रहे हैं, चेक करते हैं कौन है, कहाँ से। हेलो,
1: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं? कैसे भाई, ठीक ठाक? जी जी, मुझे बताइएगा कि प्रोग्राम सुन रहे हैं, गाना सुनाएंगे?
1: प्रोग्राम
0: ओके, ठीक है, तो गाना नहीं सुनाएंगे?
1: हाँ, गाना बताएंगे आप।
0: ओके, सुना दें।
1: हम तुमसे पालेंगे, हम तुमसे पालेंगे, पलों के फूल करो बाबा।
0: ओके, किसी को डेडिकेट करना है?
1: हाँ, जवार मोहम्मद नजीर अमन मेरे साथ था, इरफान
0: आवाज। ओके जी, अल्लाह हाफिज, थैंक यू।

0: के हो तो आवाज भी सिंक की है।
1: जॾहिं माउ पंहिंजो ख़्यालु रखंदी आहे त सिहत नसलनि ताईं हलंदी आहे। हीउ पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो।
2: ज़िंदगी गुज़ारियो एतमाद सां, क़ुरान खे समझी ॿुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल क़ुरान रोज़ानो सुबुह 9:05 ते सिर्फ़ GFM 88 नेटवर्क ते।
3: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर, और मेहराबपुर की आवाज़ GAFM 94।

0: 03000113488 के ऊपर आप लोगों की बहुत सारी लाइव कॉल्स. सो आप लोग कॉल कर सकते हैं, मुझे सुर लगाओ गाना सुनाओ, हमारा सेगमेंट जिसको हम लोग कर रहे हैं इस वक्त. एक और कॉलर. हेलो,
1: अस्सलाम वालेकुम.
0: वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं? ओके, कहाँ से बात कर रहे हैं? सखर से बात कर रहे हैं. ओके, जबरदस्त गाना सुनाएंगे?
1: जी जी बिल्कुल, गाना सुनाएंगे.
0: सुना दे.
1: सुन है गजी सजा, सुन है जिंदगी सजा, मेरी दिल की धड़कनों में, मेरी दिल की धड़कनों में नई आरज़ू जगा दी. किसी ने है बाजी, मेरी दिल की सजा दी. किसी ने है बाजी, मेरी दिल की सजा दी.
0: और ये किसी को डेडिकेट करना है?
1: ये बाजी है नाइट अफसर का, हमारे को सारा सुना है.
0: ओके
1: भाई, पंजाब से जो सुन रहे हैं प्रोग्राम भाई, ये और अन्नौर भी हमारा भाई.
0: ओके जी, थैंक यू, थैंक यू सो मच. और कोशिश किया करें कि ये लिमिटेड जो है ना टॉक टाइम रखा करें. गाना सुना दिया तो आप कुछ दोस्तों को शामिल कर लें, ठीक है? कुछ दोस्तों को. लेकिन जब आप दोस्तों को भी शामिल करें, उनके एड्रेसेस भी शामिल करें साथ में, तो ये बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है. सो थोड़ा सा ख्याल से, ताकि हम मैक्सिमम लोगों के लाइव कॉल्स को रिसीव कर पाएं, ठीक है? ये रहा उनका गाना, और इसके साथ हम चलेंगे आगे.

0: Okay, next caller. Hello. Hello, assalamu alaikum.
1: Walaikum salam, kaisi ho?
0: Main theek hu, kaun baat kar rahe hain?
1: Main Asma baat kar rahi hu, Mirpur Khas se.
0: Asma baat kar rahi hu, Mirpur Khas se. Asma, pehli dafa call kar rahi ho?
1: Ji, maine dusri baar call ki
0: hai. Dusri baar call ki hai, zabardast, acha
1: hua. Pehle pehle ek dafa kaisi call.
0: Gaana sunana hai koi?
1: Gaana motiya se aake
0: किसका गाना है ये?
1: ये खुशबू लगारी का गाना है, मेरी सिस्टर का.
0: खुशबू लगारी का गाना है
1: जी.
0: बहुत याद आते हो तुम.
1: हाँ
0: चले, मैं इसको सर्च करती हूँ और मुझे मिल जाता है तो मैं प्ले करती हूँ. और कुछ कहेंगी?
1: और कुछ नहीं.
0: और कुछ नहीं, थैंक यू. बहुत सारा ख्याल रखो अपना, अल्लाह हाफिज. और जी, हम गाना प्ले करेंगे जो कि मैं कर रही हूँ. एंड द नेक्स्ट सॉन्ग इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल आई थिंक. सो हियर कम्स द सॉन्ग. और आज का टंग ट्विस्टर, आज का टंग ट्विस्टर कुछ इस तरीके से है कि परवेज ने पहाड़ी पर पड़ी पुरानी पेंटिंग पॉलिश की. परवेज ने पुरानी पहाड़ी पर पड़ी पुरानी पेंटिंग, परवेज ने पहाड़ी पर पड़ी पुरानी पेंटिंग पॉलिश की. ठीक है, ये कहना है परवेज ने पहाड़ी पर पड़ी पुरानी पेंटिंग पॉलिश की. इसकी प्रैक्टिस करना शुरू कर दें सो डैट अगला हमारा जो सेगमेंट है ना, जिसका नाम है बोलो तो माने. बोलो तो माने में हम करेंगे ये कि ये टंग ट्विस्टर बोलेंगे. जो बंदा सही सही ज्यादा ज्यादा बोलेगा जीत जाएगा. स्टे ट्यून्ड, जिंदगी गुलजार है.

अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पारां ईरान जो नयूं तजवीज़ूं रद्द करण खां पोइ आलमी मार्केट में कचे तेल जगन में वाध 3% वाध खां पोइ ब्रेंट कचो तेल 104 ऐं WTI ऐं UAE बर्बन $99 फी बैरल थी पियो। सोशल मीडिया ते जारी मुख़्तसर बयान में सदर ट्रंप चयो त ईरान जे जवाब पढ़ियो आहे, नाले मात्र ईरानी नुमाइंदनि जो जवाब मूंखे पसंदि न आयो। सदर ट्रंप चयो त ईरान खे एटमी हथियार रखण जी इजाज़त न ॾींदासीं। ईरान गेम खेॾी रहियो आहे पर हाणे खेसि घणी देरि न ॾिनी वेंदी। ईरान जो रचाव थियल यूरेनियम मलबे हेठां दफ़न थियल आहे, अमरीकी जल्द उते पहुची वेंदा। कंहिं बि शख़्स ईरानी रचाव थियल यूरेनियम जे वेझो वञण जी कोशिश कई त खेसि धमाके सां उॾाए छॾींदासीं, इहो कॾहिं बि न चयो आहे। ईरान ख़िलाफ़ फ़ौजी कार्रवाई ख़तम थी वई आहे, कुझु हद बाक़ी आहिनि पर ॿिनि हफ़्तनि अंदरि वधीक हमला करे सघूं था।

रांदड़ पाकिस्तान अप्रैल महीने में 53 अरब 53 करोड़ डॉलर पाकिस्तान मोकलिया। स्टेट बैंक पाकिस्तान चवणाए तो रकम अप्रैल 2025 के भेट में 11% वधीक आहे। हलंदड़ साल के मार्च महीने में 83 अरब 83 करोड़ डॉलर मोकलिया हुआ। शाराए भुट्टो ईद उल अज़हा खां अॻु खुली वेंदी, टूल टैक्स पर बीणो थी वेंदो। शाराए भुट्टो जी प्रोजेक्ट डायरेक्टर न्याज सुमरो चयो आहे त शाराए भुट्टो ईद उल अज़हा खां अॻु ट्रैफिक लाइ खोली वेंदी। मनसूबे में हिकु पुल तामीर हेठि आहे, पुल मुकमल न थी त मतबादल रस्तो ॾेई बि शाराए भुट्टो ट्रैफिक लाइ खोली वेंदी। मुकमल खुलण खां पोइ टूल टैक्स पर बीणो थींदो। मनसूबे में 60 अरब रुपया ख़र्च थिया।

कराची जो खान की कंपनियों सिंधी माण्हुनि खां रोज़गार खसण लगियूं, आवाज़ उथरण ते खेनि गिरफ़्तार बि कयो वियो। कराची में खान की कंपनी कई वक़्त समूरनि सिंधी ॻाल्हाईंदड़ पोहतनि खे निकाली वेही छॾी। पोहतनि जो चवणु आहे त कंपनी हिकु ई वक़्तु सिंधी मुलाज़िमनि खे टारगेट बणाए निकाली ॾिनी आहे। पुरमन एहतजाज कंदड़ पोहत ईस्ट सेंट्रल ज़िले जे मुख़्तलिफ़ थाणनि ते मुंतक़िल कया विया। कराची बार एतूती चूंडनि में मुबैना दांदली जो केस दाख़िल। मुबैना दांदलीअ जो केस बार मुलाज़िम जी फरियाद ते सिटी कोर्ट थाणे ते दाख़िल। FIR में ॼणाए पियो आहे त 7 मई ते कराची बार जे चूंडनि दौरान दांदली जी वाबिला कई वई। अणॼातल वकीलनि बिलेट पेपर्स, ज़बरदस्ती केस, नारेबाज़ी बि कई। रोड़ीअ में औरत निंगरी खे मुबैना तौर ते अगवा करे वेलणनि सां हादसो। ॿ ॼणा फौत, औरत ज़ख़्मी, निंगरी गुम। क़ौमी शाहराह ते ट्रालर मोटरसाइकिल में टकर लॻण सबबि ॾिनो जागराणी ऐं अर्ज़ मोहम्मद फौत थी विया। भारो धुर जे माण्हुनि इल्ज़ाम हणियो त जागराणी धुर जे माण्हुनि घर ते हमिलो करे औरत ऐं ॿाड़ी खे अगवा कयो। हादसे में जवाबदार फौत थी विया। औरत नज़ीरा भारो ज़ख़्मी थी पई, ॿाड़ी रुखसाना गुम आहे। पुलिस जो चवणु आहे त समूरे मामले जी जांच कई पई वञे। निंगरी जी ॻोल्हा बि जारी आहे।

0: मरिया सिटी में पुरसार नमूने गुम थियल नौजवान जो पंजे घर के पेती में लाश हथ बनी गुम थियल नौजवान रहमान उर्फ गुडो हकड़ो जो घर में पेती में लाश हथाओ तस भाव राजा हकड़ो चवण आए तो घर अंदर कमरे में धप जान से पेती खोली तो भाव जो लाश मिलो लाश पता पुछण बाद भाजाई गुलनाज है मुझे बो भाव सईद फरार थी गया है शक है तो रहमान की जाल है भाव कतल कर लाश पेती में बंद कर हो बलोचिस्तान के इलाके हब में एनर्जी कंपनी जो मैनेजर फुर मजम्मत से कतल पुलिस चवण तो फैक्ट्री एरिया में फुरन शोएब सदीक के फुर मजम्मत करण से गोली हणी कतल कर मकतूल जो मर अस्पताल मुंतकिल किया गया सखर के इलाके कंदरा में धाड़ल से मुबैना मुकाबले दौरान सेंट्रल पुलिस एहलकार जनाब नवाज पुलिस हेडक्वार्टर
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN News
2: जहां उम्मीद के दिए जलते हैं
3: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर शानदार तालीमी इमारत प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला सरसब्ज बागीचा बेहतरीन फर्नीचर शानदार कंप्यूटर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिले तहसीन नतीजे खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले स्टडी टूर्स अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम और तरबियत के लिए आज ही मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन मैनेजिंग डायरेक्टर मजर स्कूल सिस्टम 03000002734 निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर 03013865453
4: खुशखबरी खुशखबरी हाणी अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज खां इशा जे नमाज ताई आई हर आचर ते सुबुह जो 9 वगे खां रात 8 वगे ताई मरीजन जो इलाज कंदा आहन एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर वधिक राबते जे लाइ 03385569 03003855 69
5: छा अहां जो चेहरो बेजान आई डल लगे थो हाणे वक्त आहे चमकण जो हैमे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम सा कुदरती जुजन सा तैयार कयल जेका दे कुदरती निखार साफ नरम आई रोशन चेहरो पहरे ही इस्तेमाल में फर्क महसूस करियो हैमे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम तहां भी चमकायो पहजो चेहरो जीए होजे हीरो हैमे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम चेहरे जी असल चमक जो राज
6: माशाला फौजी पाइप फैक्ट्री नर्स गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेहरापुर असा वट जगह जो डारियो जगह जा पावा आई पाइप डेढ़ ब चार छह नव आई बारह इंच में प्लेन आई कॉलम में मौजूद आहिन फौजी बायरन लाए खुसूसी रियायत होंदी राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 03015541456 आई तौकीर अहमद 03616237
5: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जहाँ में मिले थी मोटरसाइकिल थी कार कारदगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएमजी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनिए थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राबते जे लाए 03-20-18-00-003
7: अस्सलाम वालेकुम अदा
8: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
7: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
8: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
7: न अदा
9: यार आज कल शहरन तोड़े गोछन में जी मेरा पर एफएम 94 ही हले थो मो पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
7: मुझे दुकान जी बेड हरंदी
8: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए
7: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
9: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
8: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
10: 03013992836
11: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है सुनते रहो जी एफ एम 94

0: It's 12:15 p.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream, Asli Glow Har Niya Josho, a product by Biocon International Pakistan.
2: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94।

0: ओके वेलकम बैक वंस अगेन. आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है. मुझे कहते हैं आरजे रुखसान. आपको मेरे साथ पूरे पूरे एक बजे तक का है. और आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं कॉल्स के थ्रू. कॉल करने के लिए 03000113488 के ऊपर आप लोगों की लाइव कॉल्स को हम रिसीव करेंगे. एंड आज का जो टंग ट्विस्टर है वो कुछ इस तरीके से है कि आप लोग मुझे कह के दिखाएंगे ये क्या हो रहा है. अब ठीक है. परवेज ने पहाड़ी पर पड़ी पुरानी पेंटिंग पॉलिश की. परवेज ने पहाड़ी पर पड़ी पुरानी पेंटिंग पॉलिश की. ठीक है, ये कहना है. और जब आप ये कहेंगे तो आप जीनियस बन जाएंगे. यू नो व्हाट, ठीक है, जो बंदा ज्यादा ज्यादा भूलेगा वो विन कर जाएगा. अच्छा, इस सेगमेंट के फर्स्ट कॉलर ऑन द कॉल चेक करेंगे कौन है, कहाँ से हल्ला हो.
1: सलाम अलैकुम.
0: वालेकुम अस्सलाम. कौन और कहाँ से. सॉरी, आवाज आपकी डिस्टॉर्शन आ रहा है आवाज में.
1: हेलो
0: हेलो, आवाज आ रही है मेरी.
1: जी जी बिल्कुल, सर बात कर रहा हूँ, सर मेरी आवाज.
0: ओके, प्रोग्राम सुनते हैं.
1: जी जी, देखते आपका ये प्रोग्राम हम सुनते हैं. जबरदस्त प्रोग्राम है आपका.
0: ओके, टंग ट्विस्टर सुना है आपने.
1: नहीं, ये हमारे पुराने रहता है, बाकी हमारे मोलाई का गाना सुनाओ.
0: मोलाई का गाना सुनाते हैं जी. थैंक यू. और वही लोग कॉल करें जो के या कहना जानते हो या कहना चाहते हो टंग ट्विस्टर. ठीक है, 03000113488 नेक्स्ट कॉलर. हेलो, वालेकुम अस्सलाम. कौन बात कर रहे हैं. प्रोग्राम सुन रहे हैं भाई.
1: हाँ, आपको तो पता होगा आपका जो मुख्य रखता है वो आपका सुन सुनकर इस्तेमाल करता है.
0: ओके, प्रोग्राम सुन रहे हैं, इसका मतलब टंग ट्विस्टर सुना है. भूलेंगे.
1: हाँ, वो सुना है लेकिन हमें नहीं आता ना.
0: नहीं आता सवाल. आप चलें, जो आता है वो बता दें.
1: हमें हम आपके शो में शामिल हैं, यही हमें आना था.
0: हम आपके शो में
1: शामिल हुए, ये हमारे.
0: चले, जबरदस्त, बड़ी नवाजिश. और कुछ
1: और कहते हैं.
0: हाँ जी बोले.
1: कोई भी गाना मोलाई का सुनना होता.
0: ओके जी, मोलाई की बड़ी रिक्वेस्ट आ रही है, मोलाई को प्ले करेंगे. थैंक यू, अल्लाह हाफिज. 03000113488 दैट इज अवर लाइव कॉलिंग नंबर एंड द नेक्स्ट कॉलर इज हियर. हेलो,
2: अस्सलाम वालेकुम.
0: वालेकुम अस्सलाम. कौन बात कर रहे हैं.
2: जोया.
0: जोया कहाँ से बात कर रही हैं.
2: सखर से.
0: सखर में कहाँ से बात कर रही हैं. जोया
2: से बात कर रही
0: हूँ. ओके जोया, पहली दफा कॉल की है.
2: जी जी.
0: ओके, प्रोग्राम सुनती हो जोया.
2: जी, मैं रोजाना सुनती हूँ.
0: रोजाना सुनती है, जबरदस्त. अच्छा, मुझे बताएं कि टंग ट्विस्टर सुनाए.
2: रिपीट करूं.
0: रिपीट करूं बोलेंगी.
2: जी.
0: परवेज ने पहाड़ी पर पड़ी पुरानी पेंटिंग पॉलिश की.
2: परवीन ने.
0: परवीन नहीं, परवेज. परवेज ने पहाड़ी पर पड़ी पुरानी पेंटिंग पॉलिश की.
2: नहीं आ रहा.
0: नहीं आ रहा, चलें कोई बात नहीं. और कुछ कहेंगी.
2: आप गाना सुनाएंगी.
0: हाँ जी बताएं, कौन सा सुनना है.
2: बस कॉल भी चला दो.
0: कौन सा.
2: जो आपको पसंद.
0: चले, मुझे जो पसंद है मैं वो चला रही हूँ. थैंक यू. और कुछ.
2: खुदा
0: हाफिज़. ओके जी, थैंक यू सो मच. एंड इसी के साथ हम 03000113488 के ऊपर बहुत सारी लाइव कॉल्स को इंटरटेन कर रहे हैं.

0: one more next caller. Hello. Hello, assalamu alaikum. Hello, assalamu alaikum. Okay, hello, assalamu alaikum.
1: Walaikum assalam.
0: Sardar, kaise ho?
1: ठीक हूँ, आप बताइए कैसे?
0: जी मैं अच्छी हूँ. मुझे बताएं कि आप प्रोग्राम सुन रही हैं?
1: ऐसे थोड़ी ना कॉल करती हूँ.
0: ऐसे थोड़ी ना कॉल करती हैं. अच्छा, टंग ट्विस्टर सुनाएं, बोलेंगी?
1: पहले मैं पहाड़ी पर पड़ी पुरानी पेंटिंग पॉलिश की.
0: हाँ, यही है.
1: पहले मैं पहाड़ी पर पड़ी पुरानी पेंटिंग पॉलिश की. पहले मैं पहाड़ी पर पड़ी पुरानी पेंटिंग पॉलिश की. पहले मैं पहाड़ी पर पड़ी पुरानी पेंटिंग पॉलिश की. पहले मैं पहाड़ी पर पड़ी पुरानी पेंटिंग पॉलिश की. पहले मैं पहाड़ी पर पड़ी पुरानी पेंटिंग पॉलिश की.
0: आगे स्टॉप. वाओ, क्या स्पीड है. मतलब आपकी तो बढ़ती ही जा रही है. कम कम कब होगी? मतलब बढ़ेगी, अभी भी बढ़ेगी आगे?
1: ये तो आपके सुनते मैंने बोलना सीखे.
0: बोलना सीखे, माशाल्लाह. हंसती भी बड़ा अच्छा हो. ये वाली हंसी मुझे भी सिखा दो. क्या क्या?
1: गुड़ खा के मर गया.
0: नहीं, गुड़ खा के क्यों मरे, गुड़ खा के आप जिए. हाँ, ये गुड़ खा के क्या होता है, मतलब इसके पीछे क्या लॉजिक है? मतलब गुड़ में क्या जहर है? चले कोई बात नहीं. इसी बात पे आपको एक गाना सुना रही हूँ. किसको डेडिकेट करेंगे?
1: मुझे.
0: किसको?
1: मुझे.
0: सिर्फ आपको?
1: सिर्फ मुझे.
0: सिर्फ आपको डेडिकेट करेंगी. ओके, ठीक है. और मुझे ये बताइएगा कि और कुछ? थैंक यू. और हम प्ले कर रहे हैं इस वक्त. मेरी प्लेलिस्ट में मौजूद है जी एक ब्यूटीफुल सॉन्ग. एंड हियर कम्स ब्यूटीफुल सॉन्ग बाय शकीरा. हिप्स टर्न लाइव.

Okay, it's a beautiful song. And hum move kar rahe hain ji. Again. And here comes another beautiful song. जो कि मैं प्ले कर रही हूँ जी ये वाला गाना हम प्ले करेंगे द ब्यूटीफुल सॉन्ग थोड़ा सा अरबिक बनते हैं आगे गाना सुनते हैं इंजॉय करते हैं हमारा सेगमेंट बोलो तो माने देखते हैं कौन कौन टंग ट्विस्टर अच्छा अच्छा कह के दिखाता है स्टे ट्यून्ड जिंदगी गुलजार है

0: It's 12:30 PM. This time check is brought to you by
1: Hame Diamond Glow Bleach Cream, jo deep clean kare aur de 4 guna brightness, chamak aise diamond skin jaisi. Hame Diamond Glow Bleach Cream.
2: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरा पर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमपी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुम्मे छंछर आचर

क्या कह दिया है आपने. नजीर खोसो वंस अगेन बलोचिस्तान से. अब्दुल सत्तार अस्सलाम वालेकुम सिस्टर रुखसार कैसी हो. जी अच्छी हूँ. कहते हैं अल्लाह पाक आपका नसीब अच्छा करे. थैंक यू. आबिद नौशिरो फिरोज से हमें कमेंट कर रहे हैं. मोहम्मद ताहिर लोंड वंस अगेन सलाम आरजी. वालेकुम अस्सलाम. उमेर अहमद फ्रॉम अल्हा वरायो पहवर. हाउ आर यू. मुमताज मौलाई को सुनना चाहते हैं.

अच्छा आज का जो टंग ट्विस्टर है वो किसने अच्छा अच्छा बोला है वो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम एक और गाना प्ले करेंगे एंड द सॉन्ग इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल, सुनेंगे, एंजॉय करेंगे, आगे चलेंगे, स्टे ट्यून्ड।

0: जॾहिं माउ पंहिंजो ख़्यालु रखंदी आहे त सिहत नसलनि ताईं हलंदी आहे। ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो।
1: छा अव्हां जो चेहरो बेजान ऐं डल लॻे थो? हाणे वक़्तु आहे चमकण जो। हेमे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम सां कुदरती जुज़न सां तयार कयल, जेका ॾे कुदरती निखार, साफ़ नरम ऐं रोशन चेहरो। पहिरें ई इस्तेमाल में फ़र्क महसूस करियो। हेमे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम तव्हां बि चमकायो पंहिंजो चेहरो जीअं हुजे हीरो। हेमे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम, चेहरे जी असल चमक जो राज।
2: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर, और मेहराबपुर की आवाज़ GAFM 94।

और लास्ट लिंक में जब हम वापस आए हैं, सो हम प्ले करेंगे एक अदद सॉन्ग, और ये वाला सॉन्ग हम सुनेंगे, एंजॉय करेंगे. सो जी, इसी के साथ हम चलेंगे आगे और लास्ट एंड लकी कॉलर्स को भी रिसीव करेंगे.

0: अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जंग जे खात्मे बाबत ईरानी जवाब के नाकाबिले कबूल करार ॾींदे रद्द करे छॾियो। ईरान ते वधीक हमलनि जो चिता, समाजी वेबसाइट ते जारी कयल बयान में डोनाल्ड ट्रंप चयो आहे त ईरान गेम खेॾी रहियो आहे पर हाणे खेसि घणी ढर न ॾिनी वेंदी। ईरान जो रचायल यूरेनियम मलबे हेठां दफ़न आहे, जंहिं ताईं जल्द पहुची वेंदासीं कॾहिं बि नाहे। चयो त ईरान ख़िलाफ़ फ़ौजी कार्रवाई ख़तम थी वई आहे, कुझु हदफ़ रहियल आहिनि, ॿिनि हफ़्तनि अंदरि वधीक हमला करे सघूं था।
1: तहरान दुश्मन आरो करे बि कंधो न झुकाईंदो, गाॾियुनि जो मक़सदु शिकस्त

शाहराह भुट्टो ईद उल अधा खां पहिरीं खुली वेंदी, टोल टैक्स बि बीणो थी वेंदो। शाहराह भुट्टो जे प्रोजेक्ट डायरेक्टर न्यास सूमरो जो चवण आहे त शाहराह भुट्टो ईद उल अधा खां पहिरीं ट्रैफिक जे लाइ खुली वेंदी। मनसूबे में हिकु पुल तामीर हेठि आहे, पुल मुकमल थी त मुतबादिल रस्तो ॾेई बि शाहराह भुट्टो खे ट्रैफिक लाइ खोलियो वेंदो।

0: रोड़ीअ में औरत निगरी खे मुबैना तौर ते अगवा करे वञण सां हादसो, ॿ ॼणा फोत, औरत ज़ख़्मी, निगरी गुम। कौमी शाहरा ते ट्रालर मोटरसाइकिल में टकर थियण सबबि ॾिनो जागीराणी ऐं अर्ज़ मोहम्मद फोत थिया। भारू धुर जा माण्हू इल्ज़ाम मड़ियो आहे त जागीराणी धुर जे माण्हुनि घर ते हमिलो करे औरत ऐं ॿारी खे अगवा कयो। हादसे में जवाबदार फोत थिया, औरत नज़ीरा भारू ज़ख़्मी थी, ॿारी रुखसाना गुम आहे। पुलिस जो चवण आहे त मामले जी जांच कई पई वञे, निगरी जी ॻोल्हा बि जारी आहे।
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज़।

0: It's 1:15 p.m.
1: This time check is brought to you by White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94
1: वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान

ओके जी, प्रोग्राम में आप हमें ज्वाइन करते जाइए, मजे करेंगे, आप लोगों के साथ साथ बातें होंगी और आप लोगों को बताए जाएंगे जनाब खूबसूरती के राज। यहाँ पर टाइम हो जाता है जरा, हम शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जल्दी से वापसी आप लोगों के पास आते हैं। तब तक आप क्या करेंगे, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा और सुनते रहिए प्रोग्राम व्हाइटिश एंड स्किन ब्यूटी शो। मैं जरा यूं जाकर यूं वापस आती हूँ, ठीक है, यही बैठिएगा।

0: It's 1:30 p.m. This time check is brought to you by
1: Heme Diamond Glow Bleach Cream. Kudrati jizan sa tayar kayal. Jekade kudrati nikhar. Saaf, naram, ay roshan chehro. Heme Diamond Glow Bleach Cream.
2: खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमपी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुम्मे छंछर आचर ए सोम

0: गुर्दे की पथरी मसाने की पथरी जो बगैर ऑपरेशन के कामयाब इलाज किया वे तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे की खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न बदन मर्दन औरतुन में वजन जो न बदन उन सभी बीमारियों को कामयाब इलाज किया वे तो राबते लिए 0301-9196-851।
1: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय।
3: जडे मां पांजो ख्याल रखंदी आहे त सेहत नस्लन ताईं हलंदी आहे। ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफां पेश कयो वियो।
4: जिंदगी गुज़ारियो एतमाद सां, कुरान खे समझी ॿुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोज़ानो सुबह 9:05 ते सिर्फ़ GFM 88 नेटवर्क ते।
5: खुशखबरी खुशखबरी, हाँ अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन ऐं नहन एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असुर निमाज खां इशा जे निमाज ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज़द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहराबपुर। वधीक राब्ते जे लाइ 0385 569 0300 3 8 5 6 9।
3: जॾहिं माउ पंहिंजो ख़्यालु रखंदी आहे त सिहत नसलनि ताईं हलंदी आहे। ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो।
6: अस्सलाम वालेकुम अदा।
7: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
6: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो, छा कजे?
7: अदा दुकान जी मशहूरी कराई अथई?
6: न अदा।
8: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जीए मेरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली नथी चवे।
6: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
7: हां अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
6: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
8: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड, मेरापुर।
7: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
9: 0301-399-2836।
10: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है, सुनते रहो GFM 94।
11: It's 2p.
12: थोरो ख़र्चो मरीज़ पाण भरींदा, ऐं हा एक्सरे, IVP ऐं CT स्कैन पिण अधु पैसनि में कराए ॾिए थी। पेशावराना डॉक्टरनि ॾांहुं मरीज़ खणी वेंदड़नि जे भुलाइण ते तवजो न ॾियो। एड्रेस अल निसा मेडिकल सेंटर, नद सिटी चौक, सचल कॉलोनी, लाड़काणो। टाइम

मुलो डी अवां के रेडिएंट लुक रोजानो जे इस्तेमाल सा हर किस्म जी स्किन जे लाए परफेक्ट हाने थियो खूबसूरत थियन वधिक आसान व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर डी बेहतरीन रिजल्ट हासिल कर लाए व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम सा गड इस्तेमाल करियो व्हाइट एश ब्यूटी सोप व्हाइट एश ब्यूटी सोप सा मिले चमकदार निखार ताजगी सा गड व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

आप सब वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं जी एफ एम 88 नेटवर्क। मौजूद हमारे साथ सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सखरन मेहरापुर मातली और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो। ओके जनाब, सो व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में आप लोगों को बताया जाता है और साथ ही साथ जो है ना मैंने ये चीज नोटिस करी है कि आप लोगों को जो है ना वो एक घंटे में एक प्रोडक्ट के बारे में बताया जाए, दूसरे घंटे में दूसरे प्रोडक्ट के बारे में बताया जाए। ऐसा ये होगा कि सारी चीजें मिक्स नहीं हो जाती और इससे आप क्लियरली जो है ना वो चीजें समझ जाएंगे और आपको आराम से सारी बातें समझ भी आ जाएगी। तो बिल्कुल आज आप लोगों के लिए जो है मैं आप लोगों को बताने लगी हूँ व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में, क्योंकि टाइम इस मरतबा जो होता है ना यानी कि पहले वाले घंटे में थोड़ा सा ज्यादा हमें लग रहा होता है, थोड़ा ज्यादा टाइम है, तो उसमें आप लोगों को ज्यादा प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे जो कि ज्यादा प्रोडक्ट है। तो ज्यादा प्रोडक्ट के बारे में जो है आप लोगों को बताने लगी हूँ कि जब आप व्हाइट एज के ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इंतखाब करते हैं ना, तो व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे वाले प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। तो व्हाइट एज का अगर आप फेस वॉश लगाते हैं, जैसे कि व्हाइट एज का विटामिन सी के साथ साथ फेस वॉश और विटामिन सी इसके अंदर मौजूद है जो कि आप लोगों की खूबसूरती को जाहिर सी बातें बढ़ाएगा और साथ साथ जो है ना और उसके अलावा आप लोगों की स्किन को हमेशा क्लियर और ब्यूटीफुल बनाए रखेगा। अगर आप फेस वॉश इस्तेमाल करने वाले लोग हैं, फेस वॉश यूज करते हैं, तो आप व्हाइट एज का फेस वॉश जरूर ट्राई कीजिएगा जो कि विटामिन सी के साथ साथ तैयारशुदा है। उसके अलावा अगर आप व्हाइट एज का ब्यूटी सोप ट्राई करते हैं, तो व्हाइट एज का ब्यूटी सोप जो है ना आपकी स्किन को हमेशा फ्रेश बनाए रखेगा, आपकी स्किन को जो है ना वो फेयर करेगा, आपके चेहरे पर जितने भी साइड इफेक्ट्स हैं उन सब चीजों से आपके चेहरे को प्रोटेक्ट करेगा और आपके चेहरे पर जो रिंकल्स हैं, डार्क स्पॉट्स हैं, ये सारी चीजें खत्म करेगा, क्योंकि व्हाइट एज का जो सोप है ना वो भी एलोवेरा और एवोकाडो से तैयारशुदा है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम की, तो जनाब व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम जो है ये एक जदीद और स्किन केयर प्रोडक्ट है जो जल्द को तरोताजा और नरम बनाता है, खूबसूरती को बढ़ाने के लिए भी पहले नंबर पर है। और व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम आप लोगों को पता है कि एलोवेरा और एवोकाडो से तैयारशुदा है, दोनों चीजें आप लोगों की स्किन के लिए फायदेमंद है और उसके अलावा आप लोगों की स्किन को महफूज बनाए रखती है। और अगर आप ये चाहते हैं कि हमारे चेहरे पर झुर्रियां काफी ज्यादा बढ़ चुकी हैं, स्याह धब्बे हैं, तो उनको कम करती हैं और आपकी स्किन जो है ना यानी कि आपकी जो जल्द है वो साफ और रोशन बन जाती है। इसमें कुदरती अज्जा है जो कि एलोवेरा है, जाहिर सी बात है, और एवोकाडो भी है। तो आप अपनी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल लाजमी कीजिएगा और व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम एक नाइट क्रीम है, तो आप इसे रात के टाइम इस्तेमाल कीजिएगा। इस्तेमाल करने से पहले आप अपना फेस वॉश लाजमी कीजिएगा जो कि आप व्हाइट एज ब्यूटी सोप से भी कर सकते हैं और व्हाइट एज के जो फेस वॉश है ना उनसे भी कर सकते हैं। तो जरूर से आप ट्राई कीजिएगा, क्योंकि जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे तो आप लोगों को पता कैसे चलेगा। तो ट्राई करके देखिए, फिर ही बताइए कि भाई जान आप लोगों को रिजल्ट कैसे और कितने अच्छे मिले हैं। उसके साथ साथ हम जरा मूव करते हैं मेरे फेवरेट वाले प्रोडक्ट की तरफ, आप समझ तो गए होंगे। तो बिल्कुल जी, मेरा जो फेवरेट वाला प्रोडक्ट है वो व्हाइट एज लवली क्रीम है और व्हाइट एज की जो लवली क्रीम है ना जनाब, ये इतनी जबरदस्त है, रेडिएंट अल्ट्रा विटामिन्स के साथ साथ तैयारशुदा है, जिसके अंदर 30 विटामिन कैप्सूल मौजूद है और 30 विटामिन कैप्सूल मौजूद है, जैसे कि इसमें हर तरह का विटामिन मौजूद है, विटामिन B3 है, विटामिन C है और विटामिन E की ताकत के साथ साथ आपकी जल्द को निखार देगा और बेहतरीन आपकी जल्द को खूबसूरतियां भी देगा और इसके साथ साथ आपकी स्किन को प्रोटेक्ट भी करता है। जैसे कि व्हाइट एज लवली क्रीम के अंदर सनस्क्रीन भी ऐड की गई है, यानी कि अगर आप धूप में लगा रहे हैं तो आप लोगों को इस चीज का टेंशन नहीं होगा कि भाई हमारी चेहरे पर जो है ना वो धूप के मौजूद असरात आ जाते हैं, हमारी चेहरे पर जो धूप पड़ती है तो उसकी वजह से हमारी स्किन और ज्यादा जो है ना वो डल हो जाती है। बल्कि व्हाइट एज लवली क्रीम आप लगाकर अपने काम भी कर सकते हैं, धूप में भी जा सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर सनस्क्रीन ऐड की गई है, आपकी खूबसूरती को बढ़ाएगा, आपके चेहरे को प्रोटेक्ट करेगी और आपको हमेशा जो है ना ब्यूटीफुल लुक भी देगी। तो व्हाइट एज की लवली क्रीम आप ट्राई करके देखिए, आप हर एज में लगा सकते हैं क्योंकि ये एक लवली फेयरनेस क्रीम है, तो आप जरूर लगाइएगा। उसके साथ साथ जो है ना आप दिन में भी लगा सकते हैं, रात में भी लगा सकते हैं, ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। और साथ साथ जिन लोगों की स्किन के ऊपर दाने काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं, एक्नी का मसला है, एक्नी की वजह से आप परेशान बैठे हैं, तो जनाब डॉक्टर पिंपल नाम से ये ट्यूब आपको मिल जाता है। डॉक्टर पिंपल नाम से अगर आप अपने करीबी जनरल स्टोर से जाते हैं, ट्यूब परचेज करते हैं, ये एक्नी ट्यूब ही आप लोगों को मिल जाता है जी। और अगर आप इस्तेमाल करते हैं डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब, तो जनाब आप लोगों को पता हो कि ये आयुर्वेदिक फार्मूला है। आपके चेहरे पर अगर एक्नी मार्क्स हैं या फिर आपके चेहरे पर कोई भी जिद्दी सा दाना है या फिर आपके चेहरे पर ब्लैक पोर्ट्स हो, ब्लैक हेड्स हो, व्हाइट हेड्स हो या फिर आपके चेहरे पर ऑयल काफी ज्यादा बढ़ चुका है, तो इन तमाम तर चीजों को कंट्रोल में लाने के लिए, इन तमाम तर चीजों को आप लोगों से प्रोटेक्ट करने के लिए आप लोगों के लिए डॉक्टर पिंपल ट्यूब मौजूद है जो कि व्हाइट एज वालों का ही है। तो डॉक्टर पिंपल नाम से आप
से जो है ना वो परचेज कर सकते हैं कहीं से भी जाकर. आप अपने करीबी जनरल स्टोर पर जाइए और वहां से नाम लेकर तलब कीजिए. और साथ साथ अगर आपके एरिया में नहीं अवेलेबल तो आप डायल कीजिए 03-15-799-0595. ये नंबर डायल कीजिए और अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर ये तमाम तर प्रोडक्ट्स अवेलेबल कराते जाइए. तो वाइट एज के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ये आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर मिलने चाहिए ताकि आप वहां से जाकर इजीली परचेज कर सकें. आपके लिए भी आसानियां, आपके आसपास के लोगों के लिए भी आसानियां.

ओके जी, तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को जितने भी प्रोडक्ट्स के बारे में बताया, ये सारे प्रोडक्ट्स आप लोगों की स्किन के मुताबिक तैयार शुदा है और आप लोगों की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए है, तो आप जरूर से ट्राई करके देखिएगा। नंबर के ऊपर रابطہ कीजिए, अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराइए और इस्तेमाल करते जाइए वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स, क्योंकि आप लगाएंगे जब ही तो फायदा उठाएंगे, तो जरूर से लगाइए और खूबसूरत हो जाइए। और इसी के साथ साथ गाना लगा दिया है मैंने, तो गाना भी सुनेंगे, आपके मैसेजेस हैं, क्या कह रही हैं आप, उनकी जाने भी आते हैं।

ना मना है, लेकिन सेगमेंट में जरा हम थोड़ा सा असा उबतो कम ना कयो एती सके तो सेगमेंट हुंदो सच बोलना मना है। ठीक है, इन में मां मां का मुख्तलिफ सवालात पुछंदम। ठीक है, आई तमा छा कना तमा उन जो जवाब दीदा पर सच न हो जे वो। ठीक है, सच न हो जे वो, कूड़ हो जे। आई दिसन हासी वैसे त डठो वने त मानु कूड़ में डाडा मायर हुना है। सो बिल्कुल ही सेगमेंट मां उनन मानन के जको ना पाने ज़हन में रखी करे ही सोचो आए त ई भी थी सके तो तमा प्रोग्राम में अचो आई ही जेको सेगमेंट आए में सा बिल्कुल मजो करना से आई मा तमा का मुख्तलिफ सवालात पुछनम उनन ते तमा के जेको जवाब देनो आए ओ तमा के देनो आए सच न सही आ सच बोलना छो तो मनाए। वैसे ये फनी वे में होने वाला है तो उसे सीरियस मत लीजिएगा। ठीक है, और उसके साथ साथ अगर आप व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं। आपके एरिया में मिल रहा है नहीं मिल रहा आप मुझे ये भी बता सकते हैं। ठीक है, तो सेगमेंट आप पहले से सुन लीजिए ताकि ऐसा न हो कि कॉल पर आकर बोलें कि असांखे तो खबर ही कोने का तांखे खबर हुजन घुर्जे। सही आ समझो था पोए तमाम जो अजी सेगमेंट के फॉलो करे सको। यहाँ पर अरिबा हमारे साथ मौजूद है। अरिबा कहती है ओके अरिबा आपको वेलकम हो गया जी, बहुत शुक्रिया। और कश्यप हमारे साथ वालेकुम अस्सलाम, आप ही आप कैसी हैं? गुड आफ्टरनून, दुआ करो आज मेरी कॉल लग जाए। बेस्ट फ्रेंड आरजे सिद्रा मुस्कान आप ही। अच्छा गाना कौन सा सुनेंगे बताएं जरा। उसके अलावा हैं जी हमारे साथ चाचा खाले जुड़े जो कहते हैं कि एक सॉन्ग आपके पैनल पर काफी दिन से पड़ा तड़प रहा है। ये बात वैसे है, कितने दिन हो चुके ये गाना हमने नहीं सुना। सो आज मैं कोशिश करूंगी कि ये वाला गाना हम लगाएंगे। ठीक है, और उसके अलावा क्या कहते हैं? ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। और ये हमारे साथ हैं, क्या कहते हैं? कोई गजल सुनाकर क्या करना, यूं बात बढ़ाकर क्या करना, तुम मेरे थे तुम मेरे हो, दुनिया को बताकर क्या करना, तुम खफा भी अच्छे लगते हो फिर तुमको मना कर क्या करना, तेरे दर पर आकर बैठे हैं अब घर भी जाकर क्या करना, दिन या से अच्छा गुजरेगा फिर तुमको भुला कर क्या करना। ना दिल में को गेर था रखूं। अच्छा ये हमारे साथ मौजूद है गुलाम शबीर तुनियो भाई, ओ आप ही सॉन्ग तो बनता है आज हमारा मंजू सकरानी की आवाज में दिल में अज। ओके ओके चले मां गानो समझी हम ता केड़ो गानो चयो आए। सो मां कोशिश क्या थी बिल्कुल तमाचो गानो हलाइंदा सी हते एकड़ो मस्त गानो लगायो थम लिस्ट में। सो ही वारो सॉन्ग भी बुदंदा सी, ये गानो तमाखे वणी वेंदो समझो था, न वणी त पैसा वापस सही आ।

प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो. हाँ जी, ये बात तो है. अच्छा, कश्यप कहती है कि आप ही आपको सराइकी आती है, अगर आती है तो मुझसे सराइकी में बात किया करें, अगर नहीं आती तो मैं आपको सिखा दूंगी. जी मुझे सिखाइए, वैसे मुझे आती नहीं है.

बहुत ही प्यारा गाना यहाँ पर आप इंजॉय करें, और साथ साथ प्रोग्राम है जी इतना प्यारा और इतने प्यारे प्यारे प्रोडक्ट्स के बारे में आप लोगों को बताया जा रहा है। तो अगर आप भी व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इंतखाब कर रहे हैं या फिर आप इस्तेमाल करने के बारे में सोच रहे हैं, आपको पता है कि भाई आपकी स्किन कैसी है, तो उस हिसाब से आपने प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है, देन आपने अप्लाई करना है। वैसे भी कहती हूँ हमेशा कि आप अपनी स्किन के हिसाब से ही प्रोडक्ट का इंतखाब किया करें। अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई फला इंसान ने मुझे बताया है और ये प्रोडक्ट अगर आपकी स्किन के ऊपर सूट ना भी करे तब भी आप लगा रहे होते, तो ऐसा मत किया करें। अगर आपकी स्किन जो है वो सेंसिटिव है बहुत ज्यादा, तो आप जो है ना वो जो इतने हैवी प्रोडक्ट्स

होते हैं ना जिनके ऊपर भरे होते हैं फार्मूले, वो जरा आप थोड़ा अवॉइड किया करें जो कि आप लोगों की स्किन को नुकसान पहुंचाए, बल्कि आप उन प्रोडक्ट्स की जानिब जाया करें जो कि लाइट वेटेड हो और नॉर्मल से फार्मूले उसके अंदर ऐड किए गए हो, और वो जो है ना आप लोगों की ऑल स्किन टाइप के लिए हो। तो जो प्रोडक्ट्स आपकी स्किन के लिए होते हैं ना, यानी कि जो ऑल स्किन टाइप के लिए होते हैं, तो वही प्रोडक्ट आप लोग इस्तेमाल किया करें। इससे ये होता है कि भाई आपकी स्किन जो है ना वो हमेशा प्रोटेक्ट रहती है, आपकी स्किन हमेशा ग्लोइंग रहती है और आप हमेशा ग्लो करते रहते हैं। तो वाइट एज की ब्यूटी क्रीम है जो कि बिल्कुल लाइट वेटेड फार्मूला है, ऑल स्किन टाइप के लिए है, लड़के लड़कियां सभी लगा सकते हैं। और इसके अलावा अगर उससे भी ज्यादा हम बात करें वाइट एज लवली क्रीम की, तो ये तो भाई कमाल का प्रोडक्ट है। तो वाइट एज लवली क्रीम आप जरूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ये नाइट में भी आप लगा सकते हैं, डे में भी लगा सकते हैं, अगर आप ऑफिस जाते हैं, जॉब करते हैं, काम करते हैं, या फिर आप स्कूल जाने वाले हैं, कॉलेज जाने वाले हैं, यूनिवर्सिटी जाने वाले हैं, तो हर एज में आप अप्लाई कर सकते हैं। कितना ही कमाल का प्रोडक्ट है, तो जरूर ट्राई करके देखिएगा। बहुत ही प्यारा गाना है और साथ साथ ये हमारे साथ मौजूद है बाजी, क्या हाल है आपके बाजी, अल्लाह आपको सलामत रखे। सिकंदर अली जावरी हैं, अरसलान अली जावरी हैं, कोट रोशन अली जावरी अली आबाद से हमारा शो सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया जी। नूरे सिंतनियो भाई हमारे साथ मौजूद है, वेलकम नूरे सिंतनियो भाई जान। चाचा खालिद कहते हैं सॉन्ग की रिक्वेस्ट है, ओके अल्ट्रा ये गाना आपने मुझे डेडिकेट कर दिया, चलिए हम सुनेंगे फिर सोचेंगे कि ये मुझे डेडिकेशन के लायक गाना था भी या नहीं। अच्छा मीरपुर खास से अब्दुल अमहर कहते हैं और वाइट एज ब्यूटी क्रीम मैंने परचेज कर ली है, क्या बात है अब्दुल्ला भाई, इस्तेमाल कीजिएगा, मुझे बताइएगा फिर आपको रिजल्ट्स कैसे मिल रहे हैं, ठीक है। और ये हमारे साथ है, तुम जितनी बार रूठोगे हम उतनी बार मना लेंगे, ए दोस्त बस तुम अपनी के बाद आपका मैसेज मिसिंग पार्ट हो चुका है, तो भाई को वेलकम करते हैं। इरम वालेकुम अस्सलाम कहते मेरी प्यारी दिलबर दोस्त, शो नाइस है, थैंक यू वेरी मच इरम। हाँ जी सिया मान भी जा, अब लगा वाइट एज के प्रोडक्ट्स ताकि खूबसूरत हो जाएं आप भी। अच्छा वाइट एज के प्रोडक्ट की मैं जितनी बात करती हूँ ना, मतलब वो थोड़ी बात करती हूँ, हाफ हिस्सा बात करती हूँ, अद्ध अन्या हिस्सो रह लाए, तो तमाम अन्या खूबसूरती जो रुका ना अध स्टेट ते पहुंचायो मां चाहियां थी, तो तमाम जगह सब माण्हू मूंखे ॿुधो पिया, तमाम सब जेको आहे न वाइट एज जा प्रोडक्ट इस्तेमाल कई, तव्हां मूंखे पाण ॿुधाए त भाजी असांखे अहिड़ो रिज़ल्ट मिलियो अथव, सो तव्हां ज़रूरु ट्राई करे ॾिसजो। और संजय जयपाल भाई हमारे साथ मौजूद है, वेलकम। अर्ज मोहम्मद गोला भाई हमें सुन रहे हैं, जेकब आवाज से वेलकम जी। अच्छा महर इरफान सियाल साहब हमारे साथ मौजूद, कहते गुड होस्टिंग, ग्रेट प्रोडक्ट्स बाय वाइट एज एंड डी स्किन, यस वेलकम करते हैं महर इरफान सियाल आपको भी। हाँ जी आप बिल्कुल ना जाइएगा कहीं पर भी, क्योंकि यहाँ पर टाइम हो जाता है, जरा हम न्यूज ब्रेक की जानिब जाएंगे, उसके बाद शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक होने वाले हैं, तो वापसी जल्दी आप लोगों के पास आते हैं, सुनते रहिए, एंजॉय कीजिए और हमारा साथ दीजिए पूरे पूरे 3 बजे तक। मैं जरा यूं जाकर यूं वापस आती हूं, तो आप बैठे रहिएगा और सुनते रहिए प्रोग्राम व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट।

0: It's 2 p.m. This time check is brought to you by.
1: जॾहिं माउ पंहिंजो ख़्यालु रखंदी आहे त सिहत नसलनि ताईं हलंदी आहे. हीउ पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़.
3: मुताबिक आहे औरत खे पीउ खे मारण जी धमकी ॾेई आपघाती हमले जो चयो वियो. दहशतगर्दनि जो बलोचन सां को बि तालुक न आहे. अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जंग जे खात्मे बाबति ईरानी जवाब खे नाक़ाबिले क़बूल करार ॾींदे रद्द करे छॾियो. ईरान ते वधीक हमलनि जो चिताव. समाजी वेबसाइट ते जारी कयल बयान में डोनाल्ड ट्रंप चयो आहे त ईरान गेम खेॾी रहियो आहे पर हाणे खेसि घणी ढर न ॾिनी वेंदी. ईरान जो रचायल यूरेनियम मलबे हेठां दफ़न आहे जंहिं ताईं जल्द पहुची वेंदासीं. कॾहिं बि न आहे चयो त ईरान ख़िलाफ़ फ़ौजी कार्यवाही ख़तम थी वई आहे. कुझु हदफ़ रहियल आहिनि. ॿिनि हफ़्तनि अंदरि वधीक हमला करे सघूं था. तहरान दुश्मन आलो कॾहिं बि कंधु न झुकाईंदो. ॻाल्हियुनि जो मक़सदु शिकस्त या पोइते हटणु न आहे. ईरानी सदर मसूद पज़ेशियान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज.
4: जहां उम्मीद के दिए जलते हैं.
5: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन. मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर. शानदार तालीमी इमारत. प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन. एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार. मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला. सरसब्ज बागीचा. बेहतरीन फर्नीचर. शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की लैब्स. ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत. केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा. एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिले तहसीन नतायज. खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले. तहरीर, तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले. स्टडी टूअर्स. अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम और तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें. मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजहर स्कूल सिस्टम, 03000027234. निसार अहमद मेमन, प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, 03013865453.
6: छा अव्हां जो चेहरो बेजान ऐं डल लॻे थो? हाणे वक़्तु आहे चमकण जो. हेमे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम सां कुदरती जुज़नि सां तयार कयल, जेका ॾे कुदरती निखार, साफ़, नरम ऐं रोशन चेहरो. पहिरें ई इस्तेमाल में फ़र्क़ु महसूस करियो. हेमे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम तव्हां बि चमकायो पंहिंजो चेहरो जीअं हुजे हीरो. हेमे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम, चेहरे जी असल चमक जो राज.
7: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड.
8: सरिया, गार्डर, टीयर, एंगल, चैनल पट्टी, लोही दरवाजा, सिल्वर जा चौंक, सीमेंट, रेती, क्रेश ऐं रंग वग़ैरह बाज़ार खां बारिया दस्तियाब आहिनि.
7: हाणे अचो मेहरान आयरन स्टोर, नज़्द बलोच पेट्रोल पंप, नेशनल हाईवे, हालाणी.
8: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल, 03003204372 ऐं 02424601000.
9: This program is brought to you by
10: Bank Al Habib, Rishta Bharose Ka.
11: खुशखबरी खुशखबरी, हाणे अव्हांजे पंहिंजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी, वारनि ऐं नहनि, एलर्जी, कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण, रोज़ानो शाम जो असुर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि. एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर. वधीक राब्ते जे लाइ 03005569.

0: ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में तो आप अच्छे से जानते हैं कि वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो हैं वो कितने अच्छे प्रोडक्ट्स हैं और कितने ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन हम जरा बात करें अभी डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में। तो यहाँ पर आप लोगों को ये चीज भी पता होनी चाहिए कि डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों को डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिल रही है और साथ में डी स्किन ब्यूटी फेस वॉश मिल रहा है। डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों के लिए ये सिर्फ दो प्रोडक्ट्स हैं। अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बिल्कुल जी आप बिस्मिल्लाह कीजिए। पहले आप इस्तेमाल करेंगे, हाँ जी बिल्कुल, डी स्किन का फेस वॉश, उसके बाद आप इस्तेमाल करेंगे डी स्किन की ब्यूटी क्रीम। और डी स्किन की ब्यूटी क्रीम के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा मैं बता दी चलूं कि यहाँ पर जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करते हैं ना, तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम के इस्तेमाल से आप लोगों को ये चीज़ पता होनी चाहिए कि इस्तेमाल के बाद आप लोगों की खूबसूरती सिर्फ बढ़ेगी। और इसके अंदर विटामिन ई बीट्स मौजूद है, माइक्रो बीट्स भी मौजूद हैं, और इसके अलावा ये आप लोगों को सिर्फ दो रातों के इस्तेमाल से जो है ना बहुत ही अच्छे वाले रिजल्ट देने वाली है। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप लोगों को कहीं से भी जाकर ना आसानी से आप जाकर परचेज कर सकते हैं, ईजिली आपको मिल जाएगी। और जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करते हैं और सिर्फ दो रातें आप लगाते हैं, तो आप लोगों को वाजे नतायज जो है ना वो नजर आना स्टार्ट हो जाते हैं। जदीद आपकी जो है ना स्किन जो है वो खूबसूरत हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर जदीद अज़ा शामिल है। अगर आपके चेहरे पर जो है ना वो बहुत ज्यादा मसले चल रहे हैं आजकल, तो ये जो डी स्किन ब्यूटी क्रीम तैयार की गई है ना, ये उन तमाम तर चीजों को देखते हुए तैयार की गई है, क्योंकि ये जो एक ऐसी क्रीम है जिसके अंदर आप लोगों को विटामिन ई बीट्स मिल रहे हैं, और ये जो विटामिन ई बीट्स होते हैं ना, ये आप लोगों की स्किन के अंदर तक जाकर आपके चेहरे को जो है ना डीपली क्लीन करने के साथ साथ डीपली मॉइस्चराइज करने के साथ साथ डीपली ग्लोइंग भी बनाते हैं। तो आप देखेंगे, आपको महसूस होगा ये चीज कि आपकी स्किन जो है ना वो अंदर से ग्लो होती जा रही है। और आप जब दो लगातार इस्तेमाल करते हैं और वैसे ही आप लगाते जाएंगे, तो आप लोगों को बहुत ही अच्छे वाले रिजल्ट्स मिलते जाएंगे। तो आपके ऑल स्किन टाइप के लिए है, लड़की लड़कियां सभी इस्तेमाल करेंगे और अपनी खूबसूरती को बढ़ाते जाएंगे। उसके अलावा जब हम डी स्किन फेस वॉश की बात करते हैं, ओके जनाब, तो ये जो डी स्किन का फेस वॉश है ना, ये भी बहुत ही ज्यादा कमाल का प्रोडक्ट है। ये जब आप देखते हैं तो इसे आपको ऐसा महसूस होता है कि भाई ये प्रोडक्ट जो है ना वाकई इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। जैसे मैं आप लोगों को बताती हूँ ना कि अगर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करते हैं और साथ में डी स्किन का जो फेस वॉश है वो लगाते हैं, इसके अंदर सीरम मौजूद है और आपकी स्किन को जो है ना वो क्लीन बनाता है, आपकी स्किन को जो है ना हाइड्रेट करता है, और आपके चेहरे पर जो है ना वो जितनी भी चीजें इस तरह की आ जाती हैं जैसे कि ऑयल वगैरह हो, उसको भी कंट्रोल करेगा। और आप लोगों के चेहरे की स्किन जो है ना अगर ड्राई रहती है काफी ज्यादा, तो ड्राइनेस जो है ना वो भी कम कर देगा। तो आप जो है डी स्किन का फेस वॉश ट्राई कीजिएगा, आपकी स्किन स्मूथ हो जाएगी और क्लीन क्लीन हो जाएगी और ग्लोइंग हो जाएगी। तो ट्राई करते रहिए, खूबसूरतियां हासिल करते जाइए और इस्तेमाल कीजिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन फेस वॉश। ओके जनाब, से प्रोग्राम में आप हमारे साथ मौजूद हैं, आप ज्वाइन करना चाहते हैं, आप लोगों की कॉलिंग का सेगमेंट हम स्टार्ट करेंगे। और कॉलिंग सेगमेंट स्टार्ट करने से पहले ये चीज आप लोगों को बताती चलूं कि आज के प्रोग्राम में जो कॉलिंग सेगमेंट होगा उसमें आप लोगों के लिए सेगमेंट है सच बोलना मना है, ठीक है। और सच बोलना मना है सेगमेंट में मैं आप लोगों से सवाल पूछूंगी, मुख्तलिफ लोगों से मुख्तलिफ में सवाल पूछूंगी। तो आपने क्या करना है कि आपने कोशिश ये करनी है कि आपने जो मुझे जवाब देना है वो सच नहीं होना चाहिए। अब आप इससे अंदाजा लगा लें कि मैं आप लोगों से सवाल कैसे जो ना वो पूछने वाली हूँ, इससे जो है ना वो हम ये चीज समझ पाएंगे कि आप सच बोलने में एक्सपर्ट हैं या फिर झूठ बोलने में एक्सपर्ट हैं। कई बार दबाव ऐसा हो जाता है कि कुछ लोग सच बोलते हैं लेकिन ऐसा लग रहा होता है कि ये अगला इंसान सच नहीं बोला, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो झूठ बोलते हैं लेकिन लग नहीं रहा होता कि ये इंसान झूठ बोल रहा है, क्योंकि वो इतनी महारत से झूठ बोल रहे होते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही सेगमेंट है जनाब सच बोलना मना है, और यहाँ पर जो है हम कॉल्स आप लोगों की पिक करने वाले हैं। कॉलिंग नंबर है 0332132288। आप भी कॉल करना चाहते हैं तो बिल्कुल जी कॉल कर सकते हैं। कॉलिंग नंबर ऑन हो चुका है और लाइन बिजी होने वाली है, सो आप ट्राई कीजिए। फर्स्ट कॉल देखते हैं कौन हमारे साथ मौजूद है। सो हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम,
0: केरस से सगर मौजूद है।
1: शिकापुर खनपाजी जमालदीन भाई।
0: ओके जमालदीन भाई, छाला प्रोग्राम बदो प्या।
1: अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र आ भाई बदो प्या भाई बिल्कुल बदो प्या।
0: अच्छा मुखियो बताया तो तमाम सेगमेंट चलाए तैयार आयो सेगमेंट बदो आ। अच्छा सेगमेंट यो आत अज तमा खा मा जेको एकडो सवाल पछंदम एक मानु खा एकडो सवाल हुंदो तामो के उन जो सवाल जो जवाब जेको ने वो दींदा त तमा कोशिश कतो वो सच न हो जे।
1: बिल्कुल।
0: अच्छा सो तमा खा मा जेको सवाल पुछा थी वो सवाल जो यो थिंदो त तामो के बुधा त ता कदे चोरी के बेजी प्रोडक्ट इस्तेमाल कई आ है
1: जी भाजी तो ये रबदा जदो।

0: कॾहिं चोरी कंहिं ॿिए माण्हू जी प्रोडक्ट इस्तेमालु कई आहे, उहा प्रोडक्ट कहिड़ी बि थी सघे थी, कॾहिं तव्हां कंहिंजो चोरी कोई प्रोडक्ट इस्तेमालु कयो
1: आहे?
0: तव्हां त हारजी विया, तव्हां त सच ॻाल्हायो, कूड़ ॻाल्हाइणो हुयो. हा न, मज़ो त तॾहिं ईंदो न. चलो दोस्तनि खे यादि कंदा या बसि गुड बाए? ओके, वालेकुम अस्सलाम. जमालुद्दीन भाई हमारे साथ मौजूद है, शिकारपुर से कॉल करते हैं माशाल्लाह. और इनका आज गाना हमने नहीं सुना, बस मैं चाह रही हूँ कि आज हम ज्यादा से ज्यादा कॉल्स पे करेंगे, ठीक है? तो अगर आप जो है ना कोशिश करें कि आप जो मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ उसका जवाब आप थोड़ा सा ना झूठ वाला दीजिए, तो सच बोलना मना है. सेगमेंट है, हम यहाँ पर नेक्स्ट कॉल पे करेंगे. कॉलिंग नंबर आहे 0332-1322-88. नेक्स्ट कॉलर ॾिसूं केरु सगड़ मौजूदु आहे. हलो, अस्सलाम वालेकुम.
2: वालेकुम सलाम.
0: केरु सगड़ मौजूदु आहे?
2: दुआ.
0: दुआ, दुआ छा हाल आहे? ख़ुशि आहियो दुआ?
2: हा ठीकु आहियां, छा हूंदा आहियो?
0: अलहमदिल्ला, मां बि बिल्कुलु ठीकु आहियां. प्रोग्राम ॿुधो पिया दुआ? अलाए छा चयो? हलो, हा इहा बि ॻाल्हि आहे. मूंखे ॿुधायो त तव्हां प्रोडक्ट वरिता आहिनि वाइट एज जा या फिर डी स्किन जो कोई बि प्रोडक्ट हिनमहिल ताईं, या सिर्फ़ अञा ॿुधो था?
2: चलो
0: चलो वठिजो बिल्कुलु. ऐं मूंखे तव्हां मतिलब सवाल पुछां तव्हां खां सेगमेंट में जेको ॿुधो आहे सेगमेंट. अच्छा, सवाल तव्हांजे लाइ इहो आहे त तव्हां मूंखे ॿुधायो छा तव्हांजी जेका ख़ूबसूरती आहे उहा नेचुरल आहे? तव्हांजी ख़ूबसूरती माना नेचुरल न आहे? ओके, तव्हां मतिलब माशाल्लाह इलाही होशियारु आहियो. कहिड़नि दोस्तनि खे यादि कंदा दुआ? दुश्मन? ही कहिड़ा दुश्मन आहिनि जेके मुंहिंजो प्रोग्राम था ॿुधनि? वाह वाह, माना तरक़ी थी वई आहे. जी जी, हलाईंदा त आहिनि? न हलंदो आहे. चलो ॾिसंदासीं त छो थो हले. चलो दोस्तनि खे यादि कंदो या बसि? बस हो गई हमारी. चलो थैंक यू सो मच दुआ, तुम कॉल कई. माशा जी जी.
2: हेलो
0: जी जी, छा पुछा?
2: ना मां कुछ
0: न, बस हाने दोस्तन के याद कर त कर, न त बी कॉल वठो.
2: अच्छा ठीक है, सलाम.
0: चलो थैंक यू सो मच दुआ से सगन मारे. दुआ या दुश्मन असा के बदन सा, तो दुआ या दुश्मन हो. चाल तो खुश आयो. आई वाइट एज की क्रीम लगाए रो सही आ, ता भी सोना थे बाबा. दुश्मन इन की भी पूरो हक है. ओके जी, सो बिल्कुलु तव्हां बि ट्राए करे सघो था कॉल. कॉलिंग नंबर माशाल्लाह असांजो ॾाढो मसरूफ़ हूंदो आहे, सो कॉलिंग नंबर आहे 0332-1322-88. बिल्कुलु तव्हां कॉल करे सघो था. लॻे थो हिते नेटवर्क जेको आहे उहो सफ़ा जाम थी वियो. ओके, बिल्कुलु तव्हां सभु कॉल कयो. अॼु मां चाहियां थी त तव्हांजो इलाही खां वठी जेको आहे न कॉलियूं वठंदमि, इलाही इलाही मतिलबु कॉलियूं वठंदमि, सम्झो था? थोरो मुंहिंजी सिंधी थोरी एॾे होॾे थी वेंदी आहे. ओके, सो हीअ वारी कॉल अचे पई, ऐं हीअ वारी कॉल जेको आहे त मां सोचां पई त वठां, ठीकु आहे? ऐं ॾिसूं था केरु मौजूदु आहे. हलो, अस्सलाम वालेकुम.
3: वालेकुम सलाम.
0: केरु असां सां गॾु मौजूदु
3: आहे?
0: वसीम.
3: तोकीर?
0: हकीम अली. वसीम त चयम न?
3: जी जी.
0: चाल आहे वसीम, ठीकु आहियो? जी मां बि ठीकु आहियां. मूंखे इहो ॿुधायो त तव्हां असांजो प्रोग्राम ॿुधो पिया? डेली ॿुधंदा आहियो. ऐं मूंखे इहो ॿुधायो, तव्हांजे एरिया में क़रीबी जनरल स्टोर ते वाइट एज या डी स्किन जा प्रोडक्ट मिलनि था कोन?
3: बिल्कुलु मिलंदा.
0: वरिता अथव? अञा न वरिता अथव, छो न वरिता अथव? चलो पोइ ईअं चओ न त वठंदासीं.
3: जी जी.
0: अच्छा, तव्हां खां सवाल पुछां, सेगमेंट में जेको तव्हां ॿुधो आहे, सेगमेंट कोन ॿुधो
3: आहे?
0: अच्छा, मूंखे तव्हां इहो ॿुधायो त तव्हां कॾहिं का क्रीम इस्तेमालु कई
3: आहे?
0: न कई आहे. माना तव्हां कई आहे? ऐं तव्हां कहिड़नि दोस्तनि खे यादि कंदा? चाचो खाले तो ॿुधंदो आहे, उहो न ॿुधंदो त मां केरु ॿुधंदो असांजो प्रोग्राम. बसि चाचे खाले त खे चलो चाचे खाले त खे सलाम ॾिना तव्हां वसीम, तव्हांजूं मोहबतूं तव्हां प्रोग्राम ॿुधो पिया लाड़काणे खे तव्हां असांखे जॉइन कयो. ऐं बिल्कुलु तव्हां बि कॉल करे सघो था, कॉलिंग नंबर आहे 0333212322 and 88. नेक्स्ट कॉल वठूं था, ॾिसूं था केरु कॉलर असां सां गॾु मौजूदु आहे. हलो अस्सलाम वालेकुम. केरु असां सां गॾु मौजूदु आहे? ज़ुहेब कॉल कई आहे लाड़काणे खां. मूंखे ॿुधायो त तव्हां असांजो प्रोग्राम ॿुधो पिया ज़ुहेब? प्रोग्राम ॿुधंदा आहियो? ऐं आवाज़ आहे तव्हांजे लाइ शोर. ॿार अथव छा नंढड़ा नंढड़ा? चलो मूंखे ॿुधायो तव्हां असांजो प्रोग्राम ॿुधंदा आहियो? अच्छा प्रोग्राम जो नालो अचे थो तव्हांखे, कहिड़ो ॿुधायो? चलो डेली ॿुधंदा आहियो. अदे जी कॉल में ॾाढो आवाज़ हुयो, मथे में सूर पइजी. अदा माजरे सही आहे, ॿारनि खे चुप कराए पोइ कॉल कयो या घर खां निकिरी करे पोइ कॉल कयो. कॉलिंग नंबर आहे 0333212322 and 88. हीअ वारी कॉल वठूं था, ॾिसूं त कॉलर कहिड़े सां गॾु मौजूदु आहे. हलो वालेकुम असलाम, अॼु काॾा आहियो? चंड निकितो आहे माशाल्लाह. शिकारपुर में आयो न अञा माना? जी जी अलहमदुलिल्लाह, तव्हां ॿुधायो ठीकु आहियो? हा छो न सुञातमि, बाक़ी ईअं छो चयो त इहो काॾा चंड निकितो
3: आहे?
0: तव्हां फारूक भाई जी जी बिल्कुल न, साल खां थोरो घटि थियो हूंदो. तव्हां किथे घुमायो ॿुधायो त सही. अच्छा माना पैसो कावड़ थी वियो
3: आहे?
0: चाचे क़ाइदे आज़म खे राज़ी कयो बाक़ी. चलो चलो बजट बि राज़ी थी वेंदव. मूंखे ॿुधायो प्रोग्राम ॿुधंदा आहियो?
3: शायदि
0: ईअं ई
3: आहे.
0: जी जी चलो पर हाणे तव्हां वाइट एज बि लॻाए ॾिजो, हुन जो प्रोडक्ट अथव हुन खां वधीक भलो अथव. ठीकु अलहमदुलिल्लाह, तव्हां ॿुधायो खे लॻो पियो आहे? जी बिल्कुलु, तव्हां सां बिल्कुलु इलाही ॻाल्हायां, पर हाणे टाइम थियो आहे, असां ब्रेक वठंदासीं, वरी पोइ कॾहिं तव्हां ज़रूरु ट्राए कजो, कॉल लॻी वेंदी तव्हांजी बि. कहिड़नि दोस्तनि खे यादि कंदा?
3: सभ खां पहिरीं तव्हां तव्हांजी पूरी टीम खे मुगल इमरान अली मुगल अली जिंदोमला ऐं जेको आहे जमालुद्दीन भयो ऐं नईम आफ़ नईम मगरो बाक़ी जेके ॿुधी रहिया आहिनि सभिनि खे.
0: चलो वालेकुम असलाम, थैंक यू वेरी मच फारूक भाई, आपकी कॉल लॻी, आपने कॉल करी, बहुत ही अच्छा लगा, अपना ख्याल रखा करे. और उसके अलावा यहाँ पर ॾिसो बाबा असांजा लिसनर्स केॾा माशाल्लाह चाला गाना उन्हनि खे सभु ख़बर पइजी वञे. ओके सो तव्हां प्रोग्राम में असांखे जॉइन करे सघो था, टाइम थियो आहे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक वठूं था, हुन खां पोइ जल्दी वापसी तव्हांजी बोटिंग ईंदासीं. तव्हां कॾहिं न वञो, हिते वेठा हुजो, ॿुधंदा रहो असांजो प्रोग्राम पूरे पूरे 3 बजे ताईं. ओ हीअं वञी ओ हीअं मोटां थी, सो हिते वेठा हुजो.
1: It's 2:30 p.m. This time check is brought to you by
4: Hame Diamond Glow Bleach Cream, jo deep clean kare aur de 4 guna brightness, chamak aise diamond skin jaisi.
5: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरापुर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमन MA DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा ख़मीस जुमे छंछर आचर ऐं सूम

0: कन गलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-9196-851।
1: जॾहिं माउ पंहिंजो ख़्यालु रखंदी आहे त सिहत नसलनि ताईं हलंदी आहे। हीउ पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो।
2: ज़िंदगी गुज़ारियो एतमाद सां क़ुरान खे समझी ॿुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल क़ुरान रोज़ानो सुबुह 9:05 ते सिर्फ़ GFM 88 नेटवर्क ते। ख़ूबसूरतीअ जो असल राज़ सिर्फ़ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। हिन में मौजूद वाइटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अव्हां जी स्किन खे बणाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ़ 2 ॾींहनि में। डार्क स्पॉट्स खे करे ख़तम ऐं ॾींहुं कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर ॾींहं जो शो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
3: दिस प्रोग्राम इज़ ब्रॉट टू यू बाय।
1: जॾहिं माउ पंहिंजो ख़्यालु रखंदी आहे त सिहत नसलनि ताईं हलंदी आहे। हीउ पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो।
4: ख़ुशख़बरी ख़ुशख़बरी हाणे अव्हां जे पंहिंजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारनि ऐं नहनि एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असुर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज़द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। वधीक राब्ते जे लाइ 0385-500-69-3-8-5-6-9।
5: अस्सलाम वालेकुम अदा।
6: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
5: अदा नओं दुकान खोलियो अथम पर हले ई नथो, छा कजे?
6: अदा दुकान जी मशवरी कराई अथई?
5: न अदा।
7: यार अॼुकल्ह शहरनि तोड़े ॻोठनि में जीअं मेरापुर FM 94 ई हले थो, मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार अहिड़ो कामयाब वियो जो एड बंदि कराइण ते दिल्ली नथी चवे।
5: मुंहिंजे दुकान जी बेड हलंदी?
6: हा अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मीलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर क़िस्म जी एडवर्टाइज़िंग हलंदी।
5: अदा जल्दी कर, मुखे मुंहिंजी एड्रेस ॿुधा।
7: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज़द गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालाणी रोड, मेरापुर। राब्ते लाइ मंसूर अहमद मेमण 0301-380-8347।
8: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है। सुनते रहो GFM 94।

लेंगे, वो भी बहुत ही ज्यादा अच्छे वाले। ओके जी, तो अगर आप इन दोनों प्रोडक्ट्स में से कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप हमें बता दिया करें, आप लोगों की खूबसूरती के लिए है और आप लोगों के हुसन को बढ़ाने के लिए प्रोडक्ट्स। अगर आप चाहते हैं कि आप लोगों की खूबसूरती बढ़ती रहे तो भाईजान आप वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप इन दोनों प्रोडक्ट्स को ट्राई कर सकते हैं। ये ऑल स्किन टाइप के लिए है और आप लोगों की खूबसूरती को बढ़ाएंगे, कोई टेंशन की बात नहीं, क्योंकि इनके अंदर जो अज्जा मौजूद हैं वो बिल्कुल नेचुरल हैं। तो आप ट्राई करके देखिएगा, आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर जाइए, वहां से मालूम लीजिए, आपको मिल जाएंगे। अगर नहीं भी मिल रहे हैं तो उसके लिए आपके पास जो नंबर होगा ना उसे आप डायल करेंगे, और नंबर कौन सा होने वाला है तो जनाब नंबर है 03-15-799-0595। ये नंबर आप डायल कीजिए, अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराइए और वहां से जाकर आप इजीली परचेज करते जाइए। ओके जी, तो प्रोग्राम में यहाँ पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम हो या फिर डी स्किन का फेस वॉश हो, ये आप लोगों को मैंने पहले बताया तो बिल्कुल वही तरीकेकार हैं कि अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप इस्तेमाल करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो है ना, आप रात के टाइम, ऐसा है कि जो ब्यूटी क्रीम होती है ना वो जाहिर सी बात है वो नाइट क्रीम होती है, तो आप उसे रात के टाइम इस्तेमाल किया करें। लेकिन रात के टाइम इस्तेमाल करने से पहले जो है ना, आप अपना फेस वॉश लाजमी कर लिया करें। अगर आप डी स्किन का फेस वॉश इस्तेमाल करते हैं तो बिल्कुल जी आप अपना फेस वॉश कीजिए, अच्छे से अपने चेहरे को क्लीन कीजिए और उसके बाद आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम को अपने चेहरे पर रात के टाइम अप्लाई कीजिए।

ओके जी, तो हम पता नहीं कहाँ थे. ओके जी, तो टाइम जो है मैं देख रही हूँ तो टाइम बहुत ही जल्दी और तेजी से गुजरता जा रहा है. आप लोगों के मैसेजेस भी हैं, उनको भी हम शामिल प्रोग्राम रखेंगे. और इसके साथ साथ जो है ना पैनल पर कुछ मैसेजेस हैं तो उनको जरा मैं जल्दी से रीड कर लेती हूँ. ये हमारे साथ मौजूद है इमरान अली बिरोही लाड़काना से, लिखते हैं, तुम जितनी बार उठोगे हम उतनी बार मना लेंगे ए दोस्त, बस तुम अपनी मोहब्बत में किसी को शामिल मत करना. ये बिल्कुल सही बात, आपने बड़ी अच्छी बात बोली. और ये हमारे साथ कश्यप, कहती है कश्यप आप ही ये गाना सुनाइएगा. जी जी बिल्कुल गाना सुनाएंगे, आपको नाराज नहीं करेंगे, नाराज तेकू नहीं करना. और कश्यप कहती है आप ही तेकू मेकू क्यों नहीं आती आपको, भाई तेकू मेकू नहीं आती मुझे, चावन आता है बस. और मैंने कोशिश की है शायद, पर मैं सीख नहीं पाती हूँ, और शायद ऐसा है कि मैंने दिल से कभी ट्राई नहीं किया. और इसके अलावा जो है, अच्छा ये सलाम मिस यू, मैं आके फरमान पर वाइट एश लवली क्रीम इस्तेमाल कर रहा हूँ ईद से पहले ओके. इमरान अली बिरोही भाई हमारे साथ मौजूद है. ओके जी, ओके बिल्कुल आप मेरे फरमान पर यूज कीजिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे. और अगर रिजल्ट्स ना मिले तो मुझे बताइएगा, ठीक है, ताकि मैं आपको बताऊं कि आप कहां पर गलती करें कि आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं. इरम कहती है मां घोर थिया माय डियर दोस्त जानी सिद्रा, वाइट एश एंड डी स्किन के प्रोडक्ट्स देखने में तो बहुत नाइस है. जी बिल्कुल, देखने में भी नाइस है और लगाने में उससे भी ज्यादा नाइस है, तो आप ट्राई कीजिएगा. कश्यप कहती है मेरी कॉल नहीं लग रही, ट्राई कीजिए मेरी जान लग जाएगी, आपने अच्छा हुआ कॉल्स का याद दिला दिया. और ये हमारे साथ आज सिद्रा आप कभी ना अपनी आवाज में हमें कोई गाना सुनाएं, हमारी ख्वाहिश है. लाड़काना से इमरान अली बिरोही भाई, मैं अपनी आवाज में आपको गाना सुनाऊंगी लेकिन कब सुनाऊंगी ये मुझे नहीं पता. जयपाल भाई कहते हैं जयपाल का सलाम, हाउ आर यू, वेरी नाइस लवली ब्यूटी क्रीम. और कहते हैं एंड सोप गुड ऑल प्रोडक्ट्स वाइट एश एंड डी स्किन एंजॉय ब्यूटी स्किन सुपर रिजल्ट्स, आप सब भी ट्राई करें एंजॉय. थैंक्स अदि जी. जयपाल भाई आपको शुक्रिया कहते हैं वेलकम के साथ साथ, आप हमारे साथ मौजूद है. बताएं जरा कौन सा प्रोडक्ट आपने ट्राई करके देखा. और इसके साथ साथ हम यहाँ पर कॉल की जानेब आते हैं, कॉल्स लेंगे जी. लास्ट लिंक है और टाइम इतना तेजी से गुजरता है तो कॉल्स की जानेब आते हैं ज्यादा से ज्यादा. आज मैं ना ये सोच रही थी कि मैं बहुत ज्यादा वाली कॉल्स लूंगी, लेकिन ऐसा है कि टाइम इतना तेजी से गुजर जाता है पता ही नहीं चलता.

0: जी कॉलिंग नंबर 0333213228। सो नेक्स्ट कॉलर पिक करते हैं, देखते कौन कॉलर हमारे साथ मौजूद है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। केरसा सगर मौजूद आ आवाज ताजो कटजे जो छाना लो बुदायो ज़ुहेब लाड़काने का कॉल किया
1: लाड़काने को हरम
0: को। ओके ज़ुहेब मुखे बुदाय प्रोग्राम बुदन आयो असन जो रहमतपुर में ना है पुछा करायो आ। चलो तुम रहमतपुर में अवेलेबल कराइंदी याद कौ ती चलो जबरदस्त ठीक है बिल्कुल अवेलेबल कराइंदी यो बुदा प्रोग्राम में नालो अचे तो हलो अदा काडे बजी वयो बजी वयो दो बस यो बुधाना तो रहमतपुर में कौन थी मिले वा हाजिर सही अवेलेबल करायो ता यो हुकुम कयो ओके जी कॉलिंग नंबर 0333213228। नेक्स्ट कॉलर हेलो अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम शाह कॉलोनी कंबर खान सना वे गोपांग तो बुलाया
0: गोपांग से सगर मौजूद है प्रोग्राम बुधो प्या
2: जी जी बिल्कुल बुधो पर प्रोग्राम।
0: अच्छा मुखे बुधायो तो तवहा प्रोग्राम जो नालो अचे तो तवा के ओके जबरदस्त इस्तेमाल करने बारे में सोचो तो चलो सेगमेंट बुधो तो अज सच बोलना मना तो सच गलाइंदो तो मना फासी वेंदो
2: जी जी बुधो आ सवाल
0: सवाल पुछा मैं तवा का अच्छा टॉपिक तवाज लाए सवाल यो आए मोट त कने तवा पाजे अखी जा डार्क सर्कल लिकाने लाए सनग्लासेस यूज किया तवा बार वनी ले के तमा सनग्लासेस पाते पर हालाके सच याद तवा जे अखी जेठा डार्क सर्कल सची वेन ये कने कयो तो
2: बिल्कुल यूज कयान
0: ता यूज कयान माने या हाय या नहीं
2: जरूरत कोई नहीं टॉपिक के फॉलो कयो
0: वेरी नाइस वेरी नाइस केन दोसन की याद कंदा
2: प्यारो
0: नौजवान साथी प्रोग्राम सारा सलाम। वालेकुम
2: सलाम।
0: चलो थैंक यू सो मच प्रोग्राम में कॉल कई मोहब्बत।

ओके जी, सो हम यहाँ पर नेक्स्ट कॉलर की जानिब आएंगे. कॉलिंग नंबर 0333221322888 ये वाली कॉल पिक करती और देखते हैं कौन कॉलर हमारे साथ मौजूद है. अच्छा, नंबर वाकई एतिरो जिको न हो थी वेंदो आहे.

0: बिल्कुल निदा के वठी ॾिजो तव्हां वाइटिश लॻाइजो वरी डी स्किन जेका आहे उहा वरी निदा लॻाईंदी सही
1: आहे
0: ओके कहिड़े दोस्तनि खे यादि कंदो ओके थैंक यू सो मच अलीज़ा तव्हां कॉल कई माशाल्लाह अलीज़ा सां ॻाल्हाए करे इलाही ख़ुशी थींदी आहे अलीज़ा असांजी इलाही सुठी माशाल्लाह लिसनर आहे टाइम सफ़ा तेज़ी सां गुज़रंदो वञे पियो ऐं हा वाकई तव्हांजे कुझु माण्हुनि जी जेका आहे क़िस्मत थोरी ख़राबु आहे थोरी ख़राबु अथव पर ख़ैरु आहे रोज़ हुन कुझु माण्हुनि जी क़िस्मत ख़राबु हूंदी आहे कुझु माण्हुनि जी घणी कुझु माण्हुनि जी थोरी पर जंहिंजी थोरी हूंदी आहे न उहे बि ॾुख न कनि छो त बाबा दुआ कंदा कयो नेठि तव्हांजो बि ॾींहुं ईंदो तव्हांजो बि वारो ईंदो अपना टाइम आएगा ज़रूर और ये कहते हैं अदी जी हमने खुशी जी और अनुष्का रोशनी संध्या इन सबको लवली ब्यूटी क्रीम और सोप यूज करने का कहा है और ये यूज कर भी रही हैं वाइट एज के प्रोडक्ट्स क्या बात है जी जबरदस्त अच्छा किशोर भाई तव्हांखे छा थो लॻे

अच्छा बाकी जिन फरमाइशूं रहिजन पियूं उन्हनि जा गाना खैर अचे सुभाणे हलाईंदासीं ठीकु आहे हाणे ताईं प्रोग्राम जो वक़्तु थियो आहे त तव्हां खां इजाज़त वठो वरी इंशाल्लाह तव्हां सां मुलाक़ात मुंहिंजी थींदी सुभाणे गानो भलो आहे सो मां चाहियां पई त हीउ गानो तव्हां इंजॉय कयो ॿुधो सुकून सां मां हूंदमि त तव्हां गानो न ॿुधी सघंदा सो मोकिलाणी नाहे बाबू सिन सलामत साह सलामत अलाह हाफ़िज़ बाय लव यू ऑल एंड टेक केयर

0: तहरान दुश्मन ॾाढो कॾहिं बि न कंध झुकाईंदो। ॻाल्हियुनि जो मक़सदु शिकस्त या फोइते अटण न आहे। ईरानी सदर मसूद पज़िशचान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप खे जवाब ॾींदे चयो आहे त ॻाल्हियुनि जो मक़सदु क़ौम जे हक़नि जी हासिलात ऐं क़ौमी मफ़ादनि जी दिफ़ा आहे। ईरानी परॾेही वज़ारत जे तर्जुमान इस्माइल बकाई चयो आहे त अमरीका खे मुनासिब तजवीज़ूं ॾिनियूं हुयूं। ईरान जाइज़ हक़ घुरी रहियो आहे। असांजा मुतालबा मुनासिब ऐं ज़िमेवाराना आहिनि। विढ़ण ते मजबूर कयो वियो त ईरान ज़रूरु विढ़ंदो।
1: सदर ट्रंप पारां ईरान जूं तजवीज़ूं रद्द करण बाद आलमी मार्केट में कचो तेल महांगो थी वियो। 3% वाध ब्रेंट तेल $105 फी बैरल थी वियो। अमेरिका में विकिरो थींदड़ कचो तेल बि महांगो फी बैरल $99 खां वधी वियो। आलमी मार्केट में तेल जी क़ीमतुनि में वधीक वाध वारो इम्कान बरक़रार।
0: अमरीकी सदर 13-15 मई ताईं चीन जो दौरो कंदो। बीजिंग पारां तस्दीक चीनी परॾेही तर्जुमान मूजिबि सदर ट्रंप अरबा ते बीजिंग पहुचंदो। सदर शी जिनपिंग ऐं ॿियनि सां मुलाक़ातूं कंदो। अमरीकी सदर चीनी सदर जी दावत ते बीजिंग जो दौरो करे रहियो आहे।

0: टे सैकड़ो वाध वाध ब्रेंड तेल $105 फी बैरल थी वियो। अमेरिका में विकड़ो थींदड़ कचो तेल बि महांगो, फी बैरल $99 खां वधी वियो। आलमी मार्केट में तेल जी क़ीमतुनि में वधीक वाध वारो इम्कान बरकरार।
1: अमरीकी सदर 13-15 मई ताईं चीन जो दौरो कंदो। बीजिंग पारां तस्दीक, चीनी परॾेही तर्जुमान मूजिब सदर ट्रंप 4 ते बीजिंग पहुचंदो। सदर शी जिनपिंग ऐं ॿियनि सां मुलाक़ातूं कंदो। अमरीकी सदर चीनी सदर जी दावत ते बीजिंग जो दौरो करे रहियो आहे।

0: कॉलम में मौजूद आहिन फौजी बैरन लाए खुसूसी रियायत होंदी राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-54-41-456 तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: क्या देख रहे हो?
2: ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो।
1: बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 578 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
3: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे।
4: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरा पर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरा पर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए, जैमे मिले थी मोटरसाइकिल की कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, आरपीएमजी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनिए थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरा पर, राबते जे लाए 0320-18-00-003।
5: अस्सलाम वालेकुम अदा।
6: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
5: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे?
6: अदा दुकान जी मशहूरी कराई थई
5: न,

0: यारा अॼुकल्ह शहरनि तोड़े ॻोठनि में जीअं मिरापुर FM 94 ई हले थो। मूं पंहिंजो दुकानु खोलियो त FM मिरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार अहिड़ो कामयाब वियो जो एड बंदि कराइण ते दिल्ली नथी चवे।
1: मुंहिंजे दुकान जी भेट हलंदी?
2: हा दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मीलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइज़िंग हलंदी आहे।
1: अदा जल्दी कर, मूंखे मुंहिंजी एड्रेस ॿुधायो।
0: ऑफिस जीअं मिरापुर FM 94, नर्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालाणी रोड, मिरापुर।
2: राबते लाइ हाकिम अली जिस
3: 03013992836।
4: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

0: मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 578 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
3: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का। सुबह

खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरापुर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमण एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमपी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा ख़मीस जुमे छंछर आचर ऐं सूमर।

0: पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट ॿुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज़ फॉलिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज़ हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारनि में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-9196-8151।
1: खुशखबरी हाणे अव्हां जे पंहिंजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन ऐं नहन एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असुर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़ रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहराबपुर। वधीक राब्ते जे लाइ 0383-85-569-0300-33-8556-9।
2: अस्सलाम वालेकुम अदा।
3: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
2: अदा नओ दुकान खोलियो अथमि पर हले ई नथो, छा कजे?
3: अदा दुकान जी मशहूरी कराई अथई?
2: न अदा।
4: यार अॼुकल्ह शहरनि तोड़े ॻोठनि में जीअं मेरापुर FM 94 ई हले थो, मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार अहिड़ो कामयाब वियो जो एड बंदि कराइण ते दिल्ली नथी चवे।
2: मुंहिंजे दुकान जी भेट हलंदी?
3: हा अदा, कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मीलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर क़िस्म जी एडवर्टाइज़िंग हलंदी।
2: अदा जल्दी कर, मुखे मुंहिंजी एड्रेस त ॿुधा।
4: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मेरापुर। राब्ते लाइ मंसूर अहमद मेमण 0301-380-8347।
5: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज़ GA FM 94।

0: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनाम जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600cc कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 578 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
1: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
0: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनाम जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600cc कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 578 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
1: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे।

0: इट्स 4 PM. दिस टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय.
1: जॾहिं माउ पंहिंजो ख़्यालु रखंदी आहे त सिहत नसलनि ताईं हलंदी आहे. ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज.

0: इट्स 4 PM. दिस टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय.
1: जडे माँ पांजो ख्याल रखंदी आहे त सेहत नसलन ताई हलंदी आहे. ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफां पेश कयो वियो.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज.
3: GAFM 88 नेटवर्क
4: सिंध की आवाज.
5: दहशत गर्दनि जी सहूलतकारी ते सख़्त एहतजाज. अफ़ग़ान सरज़मीन जो पाकिस्तान ख़िलाफ़ इस्तेमाल रोकण जो मुतालबो. अफ़ग़ान नाज़िम उल उमूर खे एहतजाजी ख़त बि ॾिनो वियो.

0: अगवारी जंग में कामयाबी के साल मुकमल थियण ते शहीदनि खे भेटा पेश करण वारो ठहराउ सदर असेंबली में पेश। अगवारी जंग में शहीद थींदड़नि खे शानदार भेटा पेश। ठहराउ ते ॻाल्हाईंदे वरी वज़ीर मुराद अली
1: सहूलतकारी ते सख़्त एतिजाज। अफ़ग़ान सदर में इन जो पाकिस्तान ख़िलाफ़ इस्तेमाल रोकण जो मुतालबो। अफ़ग़ान लाज़िम उल उमूर खे एहतजाजी ख़त बि ॾिनो वियो।

0: अकबारी जंग में कामयाबी के साल मुकमल थियण ते शहीदनि खे भेटा पेश करण असेंबली में पेश में शहीद थींदड़नि खे शानदार भेटा पेश ठहराउ ते ॻाल्हाईंदे वरी वज़ीर बहाद अली शाह चयो आहे त ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में पाक फ़ौज खे बहादुरी ते भेटा पेश कयां थो। पाकिस्तानी शाहीननि दुश्मन जा जंग में 8 जहाज किराया, भारत जे गुरु राफेल खे बि मिटीअ जो ढेर बणायो, भारत जा 77 खां वधीक ड्रोन्स किराया विया, भारत शहरी आबादी खे निशानो बणायो जंहिंसां आम शहरी शहीद थिया, पाकिस्तान भारत ख़िलाफ़ रुॻो 54 मिंट ऑपरेशन कयो ऐं शिकस्त ॾिनी, क़ौम बि दुश्मन ख़िलाफ़ मुतहिद हुई, भारत जंगबंदी जे लाइ अमेरिकी सदर खे चयो हो। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जंग जे ख़ात्मे बाबति ईरानी जवाब खे नाक़ाबिले क़बूल करार ॾींदे रद्द करे छॾियो ईरान ते वधीक हमलनि जो चिताव। समाजी वेबसाइट ते जारी कयल बयान में डोनाल्ड ट्रंप चयो आहे त ईरान गेम खेॾी रहियो आहे पर हाणे खेसि घणी ढर न ॾिनी वेंदी। ईरान जो रचायल यूरेनियम मलबे हेठां दफ़ल आहे, जंहिं ताईं जल्द पहुची वेंदासीं कॾहिं बि नाहे चयो त ईरान ख़िलाफ़ फ़ौजी कार्रवाई ख़तमु थी वई आहे, कुझु हद पहल आहिनि, दफ़्तर अंदरि वधीक हमला करे सघूं था। ओभर में कामयाबियूं खिते ऐं दुनिया में नए निज़ाम जो रस्तो खोले रहियूं आहिनि। नार वारनि समुंडनि ते रुगो ईरान ऐं पारेसरनि जो हक़ आहे, आबदा हरमुस जे इस्तेमाल जे लाइ दुश्मन खे मिलियल बुनियादनि जो ख़ात्मो ज़रूरी आहे। ईरानी सुप्रीम लीडर मुस्तफ़ा खामनाई विच ओभर ऐं आबदा हरमुस बाबति 10 स्ट्रेटजिक तजवीज़ूं जारी करे छॾियूं। मुस्तफ़ा खामनाई चयो आहे त खिते में अदम तहफ़ जो वॾो कारण अमेरिकी फ़ौजनि जी मौजूदगी आहे, अमेरिका खिते जे मुल्कनि खे सलामती जी ज़मानत ॾियण खां बि क़ासिर आहे। नार ऐं उमानी समुंड ते असां ऐं पारेसरनि जो गॾियल हक़ आहे, नार में दुश्मन परदेहनि जी का बि ज़रूरत न आहे। आबदा हरमुस ते नओं निज़ाम लागू करे खिते जे आवाम खे सुकून ऐं तरक़ीअ जी ज़मानत ॾेई सघिजे थी। आबदा हरमुस ते नए निज़ाम जे नतीजे में हासिल थींदड़ मुआशी फ़ाइदनि ते ईरानी आवाम बि ख़ुशीअ जो इज़हार कंदो। तहरान दुश्मन आॾो कॾहिं बि कंधु न झुकाईंदो, शिकस्त जा पोते हटणु नाहे। ईरानी सदर मसूद पेज़िशकियान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप खे जवाब ॾींदे चयो आहे त ॻाल्हियुनि जो मक़सदु क़ौम जे हक़नि जी हासिलात ऐं क़ौमी मुफ़ादनि जो दिफ़ा आहे। ईरानी परदेह वज़ारत जे तर्जुमान इस्माइल बकाई चयो आहे त अमेरिका खे मुनासिब तजवीज़ूं ॾिनियूं हुयूं, ईरान जाइज़ हक़ घुरी रहियो आहे, असांजा मुतालबा मुनासिब ऐं ज़िमेवाराना आहिनि, विढ़ण ते मजबूर कयो वियो त ईरान ज़रूरु विढ़ंदो। सदर ट्रंप पारां ईरान जूं तजवीज़ूं रद्द करण बाद आलमी मार्केट में कचो तेल महांगो थी वियो, 3% वाध बाद ब्रेंट तेल $105 फी बैरल थी वियो। अमेरिका में विकिरो थींदड़ कचो तेल बि महांगो, फी बैरल $99 खां वधी वियो। आलमी मार्केट में तेल जी क़ीमतुनि में वधीक वाध वारो इम्कान बरक़रार। अमेरिकी सदर 13-15 मई ताईं चीन जो दौरो कंदो, बीजिंग पारां तस्दीक। चीनी परे तर्जुमान मूजिबि सदर ट्रंप 4 ते बीजिंग पहुचंदो, सदर शी जिनपिंग ऐं ॿियनि सां मुलाक़ातूं कंदो। अमेरिकी सदर चीनी सदर जी दावत ते बीजिंग जो दौरो करे रहियो आहे। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ जी सदारत हेठि आईटी ऐं टेलीकॉम बाबति इजलास, गिलगित ऐं आज़ाद कश्मीर में आसान ख़िदमत मर्कज़ क़ाइम करण जे लाइ कमु तेज़ करण जी हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ चयो आहे त आईटी शोबे खे हथी वठाइण ऐं बरामदात वधाइण पहिरीं तरजीह आहे, नौजवाननि जी आईटी जे हवाले सां महारत मां भरपूर फ़ाइदो वठणु घुरिजे। आसान ख़िदमत मर्कज़नि बाबति सूबनि सां गॾिजी कमु कयो वञे, आईटी जे शोबे में शहरी ऐं बहराड़ीअ जे इलाइक़नि में फ़र्क़ खे ख़तमु कयो वञे।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: क्या देख रहे हो, ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनाम जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे।
3: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का। खुशखबरी खुशखबरी हाणी अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज खां इशा जे नमाज ताई आई हर आचर ते सुबुह जो 9 वगे खां रात 8 वगे ताई मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर वधीक राबते जे लाइ 0300-3385-569 0300-3385-69।
4: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जैमे मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनिए थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राबते जे लाइ 0320-18-00003।
5: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर शानदार तालीमी इमारत प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला सरसब्ज बागीचा बेहतरीन फर्नीचर शानदार कंप्यूटर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिले तहसीन नताइज खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले स्टडी टूर्स अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन मैनेजिंग डायरेक्टर मजहर स्कूल सिस्टम 0300-00-27234 निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर 0301-38-65453।
6: अस्सलाम वालेकुम अदा।
7: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई
6: अदा? नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
7: अदा? दुकान जी मशवरी कराई थई
6: न अदा?
8: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर एफएम 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
6: मुझे दुकान जी बे डरंदी।
7: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
6: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
8: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
7: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
9: 0301-399-2836
8: आई मोहम्मद उमेर गोरी 0319-15-5-724।
10: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज जीए एफएम 94।

0: It's 4:30 p.m. This time check is brought to you by
1: Hame Diamond Glow Bleach Cream, jo deep clean kare aur de 4 guna brightness, chamak aise diamond skin jaisi. Hame Diamond Glow Bleach Cream.
2: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम. इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जिल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ 2 दिन में. डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो. डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो.
3: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो. बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनाम जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस. इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें. 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है. अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं. तो भाई साहब क्या समझे?
4: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का.
5: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरा पर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाब शाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाब शाह हर अरबा खमीस जुम्मे छंछर आचर.

0: मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हें सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वने तो राब्ते लाइ 0301-9196-851
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज्ड जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राब्ते जे लाइ आसिम हुसैन आराई 0307-3592120

0: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
1: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 मिंटन ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।

0: It's 5 p.m. This time check is brought to you by.
1: जॾहिं माउ पंहिंजो ख़्यालु रखंदी आहे त सिहत नसलनि ताईं हलंदी आहे. हीउ पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज.
3: जो चेताव समाजी वेबसाइट ते जारी कयल बयान में डोनाल्ड ट्रम्प चयो आहे त ईरान गेम खेॾी रहियो आहे पर हाणे खेसि घणी डर न. ईरान जो रिचार्ज यूरेनियम बे हेठां दफ़न आहे जंहिं ताईं जल्द पहुची वेंदासीं. कॾहिं बि नाहे चयो त ईरान ख़िलाफ़ फ़ौजी कार्रवाई ख़तम थी वई आहे. कुझु हदफ़ रहियल आहिनि, ॿिनि हफ़्तनि अंदरि वधीक हमला करे सघूं था. विच ओवर में ईरान जूं कामयाबियूं खिते ऐं दुनिया में नए निज़ाम जो रस्तो खोले रहियूं आहिनि. नार वारनि समुंडनि ते रुगो ईरान ऐं पाड़ेसरीअ जो हक़ आहे. आपना हुर्मुज़ जे इस्तेमाल लाइ दुश्मन खे मिलियल बुनियादनि जो ख़ात्मो ज़रूरी आहे. ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा ख़ामनाई विच ओवर ऐं आपना हुर्मुज़ बाबति 10 स्ट्रेटेजिक तजवीज़ूं जारी करे छॾियूं. मुश्तबा ख़ामनाई चयो आहे त ख़िते में अदम तहफ़ुज़ जो वॾो कारण अमरीकी फ़ौजियुनि जी मौजूदगी आहे. अमरीका ख़िते जे मुल्कनि खे सलामतीअ जी ज़मानत ॾियण खां बि कासिर आहे. नार ऐं उमानी समुंड ते असां ऐं पाड़ेसरीअ जो गॾियल हक़ आहे. नार में दुश्मन परॾेहनि जी का बि ज़रूरत नाहे. आपना हुर्मुज़ ते नओं निज़ाम लागू करे ख़िते जी अवाम खे सुकून ऐं तरक़ी जी ज़मानत ॾेई सघिजे थी. आपना हुर्मुज़ ते नए निज़ाम जे नतीजे में हासिल थींदड़ मुआशी फ़ाइदनि ते ईरानी अवाम बि ख़ुशीअ जो इज़हार कंदो. तेहरान दुश्मन आडो कॾहिं बि कंध न चुकाईंदो. ॻाल्हियुनि जो मक़सदु शिकस्त या पोइते हटण नाहे. ईरानी सदर मसूद पज़ेशकियान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प खे जवाब ॾींदे चयो आहे त ॻाल्हियुनि जो मक़सदु क़ौम जे हक़नि जी हासिलात ऐं क़ौमी मफ़ादनि जो दिफ़ा आहे. ईरानी परॾेही वज़ारत जे तर्जुमान इस्माइल बकाई चयो आहे त अमरीका खे मुनासिब तजवीज़ूं ॾिनियूं हुयूं. ईरान जाइज़ हक़ घुरे रहियो आहे. असांजा मुतालबा मुनासिब ऐं ज़िमेवाराना आहिनि. विहण ते मजबूर कयो वियो त ईरान ज़रूर विढ़ंदो.

सदर ट्रंप पारा ईरान जो तजवीजू रद्द करण बाद आलमी मार्केट में कच्चो तेल महंगो थी वो टे सौ बाद ब्रेंड तेल 105 डॉलर फी बैरल थी वो। अमेरिका में विक्रो थींदड़ कच्चो तेल भी महंगो फी बैरल 99 डॉलर का वधी वो। अमरीकी सदर 13 खां 15 मई ताईं चीन जो दौरो कंदो बीजिंग पारा तस्दीक। चीनी परडेही तर्जुमान मूजिब सदर ट्रंप अरबा ते बीजिंग पहुचंदो। सदर शी जिनपिंग बियन सां मुलाकातू कंदो। अमरीकी सदर चीनी सदर जी दावत ते बीजिंग जो दौरो करे रहियो आहे।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: लोग कहते हैं मेरी स्किन की चमक है डायमंड जैसी। मेरी स्किन की डायमंड जैसी चमक है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम से, जो डीप क्लीन करे और दे 4 गुना ब्राइटनेस। चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम। लोग कहते हैं मेरी स्किन की चमक है डायमंड जैसी। मेरी स्किन की डायमंड जैसी चमक है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम से, जो डीप क्लीन करे और दे 4 गुना ब्राइटनेस। चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम।
2: क्या देख रहे हो?
3: ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो।
2: बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
4: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।

0: कॉलम में मौजूद आहिन फौजी भाइरन लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी राबते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज्ड जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 0320 1800003

0: It's 5:15 PM.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
3: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक कलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे। जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
4: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।

0: It's 5:30 p.m. This time check is brought to you by
1: Heme Diamond Glow Bleach Cream. Kudrati jizan sa tayar kayal. Jeka de kudrati nikhar. Saaf, naram ay roshan chehro. Heme Diamond Glow Bleach Cream.
2: Kya dekh rahe ho? Ye sab to tum bahar se rakam vasool karne par bhi jeet sakte ho. बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार साथ ही मोटरसाइकिल्स स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं तो भाई साहब क्या समझे
3: बैंक अलबीब रिश्ता भरोसे का
4: अवां जी स्किन डल ए बेरोनक लगे थी हाने पहिजी स्किन खेडियो एक नओ गिलो पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम अवां जी स्किन के बनाए फ्रेश सॉफ्ट ए ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो दी अवां के रेडिएंट लुक रोजानो जे इस्तेमाल सा हर किस्म जी स्किन जे लाए परफेक्ट हाने थियो खूबसूरत थन वती का आसान वाइट एज ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर डी बेहतरीन रिजल्ट हासिल कर लाए वाइट एज ब्यूटी क्रीम सा गड इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप वाइट एश ब्यूटी सोप सा मिले चमकदार निखार ताजगी सा गड वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
5: अम्मा हेडो समका छा मिलियो
6: पुटरा

0: असांजो पाणी साफ़ न आहे, तंहिंजे करे त असां बीमार था थियूं। असांखे पाणी ऐं सफ़ाई ॿिन्हिनि जो ख़्यालु रखणु घुर्जे।
1: केॾो सियाणो पुटु आहे मुंहिंजो।
0: बाबा इहो ई जासूस तव्हांखे बचाईंदो।
2: साफ़ पाणी महफ़ूज़ ज़िंदगी, दस्तन खां बचा। ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश।
3: खुशख़बरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण पोटा पेट्रोल पंप, कोटड़ी कबीर रोड, मेरापुर, कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमबी इस्लामाबाद, होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह, हर अरबा, ख़मीस जुमे, छंछर आचर ऐं सूमर।

0: मरीजन के दवा स्टोर दा वठनी पौंदी मायरे अमराज नक कन गलो पुरानो नजलो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वहन कन जो सूर घट बुधन में अचन शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंग टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधन जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधन मर्दन आई औरतन में वजन जो न वधन उनन सबनी बीमारन जो कामयाब इलाज कयो वने तो राबते लए 0301-9196-851।
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चोपर एतमाद आई मा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज्ड जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ति जिलाई आसिम हुसैन आराई 0307-359-2120।
2: अस्सलाम वालेकुम अदा।
3: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
2: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे?
3: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
2: न अदा?
4: यार आजी कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मो पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
2: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
3: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
2: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
4: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 0301-380-8347।
5: अपना शहर अपना घर मेहरापुर और मेहरापुर की आवाज GA FM 94।

0: क्या देख रहे हो?
1: ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो।
2: बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें।
3: 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है।
4: अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं।
1: तो भाई साहब क्या समझे?
5: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
6: छा अहां जो चेहरो बेजान आई डल लगे थो, हाणे वक्त आहे चमकण जो। है में डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम सा कुदरती जुजन सा तैयार कयल, जेका दे कुदरती निखार, साफ नरम आई रोशन चेहरो। पहिरे ही इस्तेमाल में फर्क महसूस करियो। है में डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम तहां भी चमकायो पहेंजो चेहरो, जीए हुजे हीरो। है में डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम, चेहरे जी असल चमक जो राज़।

Service Tires, Pakistan's global tire brand.

0: डाले अपने खानों में जान।
1: इट्स पास्ता। इतना एसी चल रहा है, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं है।
2: AI वाला स्मार्ट एसी, लो बिल, मोंट चिल, माय डियर।
3: दिस टाइम चेक इज ब्रॉट टू

0: KBN News.
1: बनू में पुलिस चेक पोस्ट पे हमलों के अंदर दहशत गर्दन खिलाफ कार्रवाई जो हक महफूज रखूं था पाकिस्तान अफगानिस्तान ते वाज़े करे छो अफगान नाजिमुल उमूर की परेही ऑफिस पे तलबी बनू में पुलिस पोस्ट ते दहशतगर्द हमले लाए अफगान सरजमीन के इस्तेमाल ते सख्त एहतजाज दहशतगर्दी लाए अफगान सरजमीन के इस्तेमाल ते गणती भी जाहिर परेही तर्जुमान जो चवण है जांच ए शाहिद

पेचीदगी आहे। अमेरिका खिते जे मुल्कनि खे सलामती जी ज़मानत ॾियण खां बि कासिर आहे। नार ऐं ओमानी समुंड ते असां ऐं पाड़ेसरनि जो गॾियल हक़ आहे। नार में दुश्मन परॾेह जी का बि ज़रूरत न आहे। आबनाए उर्मस ते नओं निज़ाम लागू करे खिते जी अवाम खे सुकून ऐं तरक़ीअ जी ज़मानत ॾेई सघिजे थी। अबनाए हुरमस ते नए निज़ाम जे नतीजे में हासिल थींदड़ मुआशी फ़ाइदनि ते ईरानी अवाम बि ख़ुशीअ जो इज़हार कंदो। तहरान दुश्मन आॾो कॾहिं बि कंध न झुकाईंदो। ॻाल्हियुनि जो मक़सद शिकस्त या पोइते हटण न आहे। ईरानी सदर मसूद पेशकियान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप खे जवाब ॾींदे चयो आहे त ॻाल्हियुनि जो मक़सद क़ौम जे हक़नि जी हासिलात ऐं क़ौमी मफ़ादनि जो दिफ़ा आहे। ईरानी परॾेही वज़ारत जी तर्जुमान इस्माइल बकाई चयो आहे त अमरीका खे मुनासिब तजवीज़ूं ॾिनियूं हुयूं। ईरान जाइज़ हक़ घुरे रहियो आहे। असांजा मुतालबा मुनासिब ऐं ज़िमेवाराना आहिनि। विढ़ण ते मजबूर कयो वियो त ईरान ज़रूर विढ़ंदो।

0: सदर डोनाल्ड ट्रंप पारां ईरान जूं तजवीज़ूं रद्द करण बाद आलमी मार्केट में कचो तेल महांगो थी वियो। टे सैकड़ो वाध बाद बैरेंट तेल $105 फी बैरल थी वियो। अमेरिका में विकरो थींदड़ कचो तेल बि महांगो, फी बैरल $99 खां वधी वियो। आलमी मार्केट में तेल जी क़ीमत में वधीक वाध वारो इम्कान बरक़रार। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप 13 खां 15 मई ताईं चीन जो दौरो कंदो, बीजिंग पारां तस्दीक। चीनी परडे॒ही तर्जुमान मूजिब सदर डोनाल्ड ट्रंप अरबा ते बीजिंग पहुचंदो। सदर शी जिनपिंग ऐं ॿियनि सां मुलाक़ातूं थियल। अमरीकी सदर चीनी सदर जी दावत ते बीजिंग जो दौरो करे रहियो आहे। हक वारी जंग में कामयाबीअ खे साल मुकमल थियण ते शहीदनि खे भेटा पेश करण वारो ठहराउ सिंध असेंबलीअ मां यकराउ मंज़ूर। ठहराउ ते ॻाल्हाईंदे सिंध जे वॾे वज़ीर मुराद अली शाह जो चवण हो त ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में पाक फ़ौज खे बहादुरीअ ते भेटा पेश कयां थो। पाकिस्तानी शाहीननि दुश्मन जा जंग में 8 जहाज़ किराया। भारत जे गुरूर राफेल खे बि मिटीअ जो ढेर बणायो वियो। भारत जा 77 खां वधीक ड्रोन्स किराया विया। भारत शहरी आबादीअ खे निशानो बणायो जंहिंसां आम शहरी शहीद थिया। पाकिस्तान भारत खिलाफ़ रुगो 54 मिंट ऑपरेशन कयो ऐं 72 शिकस्त ॾिनी। क़ौम बि दुश्मन ख़िलाफ़ मुतहद हुई। भारत जंगबंदीअ लाइ अमरीकी सदर खे चयो हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ बचत मुहिम में वधीक ॿिनि हफ़्तनि जी वाधि करे छॾी। बचत मुहिम हाणे 15 जून ताईं जारी रहंदी। नोटिफिकेशन जारी। इस्लामाबाद में दहशतगर्दी जो मंसूबो नाकाम। बलोचिस्तान मां औरत आपघाती बम्बार गिरफ़्तार। तफ़सीली जांच ऐं एतिराफ़ बाद वालिद हवाले। वॾे वज़ीर सरफराज मुफ़्ती चयो आहे त क़ानून लागू कंदड़ इदारनि मुल्क खे वॾी तबाहीअ खां बचायो आहे। बलोच औरतूं
1: की टेंशन नहीं है।
2: एआई वाला स्मार्ट एसी लो।
3: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
4: हेलो वर्णा, खबर न है मैं हर वक्त तेरी थकेला थकेला शो हूंदी आया।
5: तू खाइंदी चाहे स्कूल में बाकी ॿारनि जी मंझंदि जी मानी ॾिठी आहे।

0: 6:30 PM. This time check is brought to you by
1: Hemay Diamond Glow Bleach Cream, जो deep clean करे और दे 4 गुना brightness, चमक ऐसी diamond skin जैसी. Hemay Diamond Glow Bleach Cream.
2: सजो डी दिसा थी, तो के परेशान घुमदी रहिया, बहरों बहरों मां थी रहिया ही ना, मुझो भी यो ही हाल हो.
3: खबर ना है तो आही सब कुछ किया क्यों नानी, मां ता एतरो थकी थी पवा, छा कयो हो

0: जॾहिं ॿिए ॿार जे सोचण जो वक़्तु अचे त ॿ साल तूं सोचजांइ, बसि इहा ॻाल्हि कमु ईंदी।
1: जॾहिं नई माउ बणजण जो डपु हुजे त कंहिं पुराणीअ जी ॻाल्हि ॿुधो। हमल जे दौरान रत जी घटिताई खे बि नज़रअंदाज न करियो। ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो।
2: खूबसूरतीअ जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अव्हां जी स्किन खे बणाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ़ ॿिनि ॾींहनि में। डार्क स्पॉट्स खे करे ख़तम ऐं ॾींहुं कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर ॾींहं जो शो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

0: आशिक होंडा शोरूम मेहरा पर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चोपर एटमाट अइमा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरा पर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज्ड जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ते जिला आसिम हुसैन आराई 0307-359-2120
1: अस्सलाम वालेकुम अदा
2: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
1: न अदा
3: यार आज कल शरण तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो मो पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
1: मुझे दुकान जी बे डरंदी
2: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
3: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 0301-380-8347
4: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी FM 94

छा अव्हां जो चेहरो बेजान ऐं डल लॻे थो। हाणे वक़्तु आहे चमकण जो। हेमे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम सां कुदरती जुज़नि सां तयार कयल, जेका ॾे कुदरती निखार, साफ़ नरम ऐं रोशन चेहरो। पहिरें इस्तेमाल में फ़र्क़ महसूस करियो। हेमे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम तव्हां बि चमकायो पंहिंजो चेहरो जीअं हुजे हीरो। हेमे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम, चेहरे जी असल चमक जो राज़।

0: सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में मेरठ की लताड़ खिलाफ एहतजाज कदड़ फयाज शहर ए रफीउल्ला कुरैशी की गिरफ्तारी का अगवारी जमानत मंजूर। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन इंतजामिया मेरठ की लताड़ खिलाफ एहतजाज कदड़न से दहशतगर्दी एक्ट तहत केस दाखिल कराया हो। अदालत फयाज शहर ए रफीउल्ला कुरैशी की 50,000 रुपये की मचलकन एवज जमानत मंजूर थी।
1: बनू में पुलिस चेक पोस्ट से हमलों कर दहशतगर्दन खिलाफ कार्रवाई जो हक में खूज रखू था। पाकिस्तान अफगानिस्तान से वाजे कर अफगान नाजिमुल उमूर के परडे ऑफिस तलवी बनू में पुलिस पोस्ट से दहशतगर्द हमले लाए अफगान सरजमीन के इस्तेमाल से सख्त एहतजाज। दहशतगर्दी लाए अफगान सरजमीन के इस्तेमाल से गणती भी जाहिर परडे तर्जमान है। जांच ए शाहिदन में साबित थो है बनू में पुलिस पोस्ट से हमले की रिथाबंदी अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्दन कई। गडियल कौमन की रिपोर्ट्स में भी अफगानिस्तान में दहशतगर्द तंजीमन की मौजूदगी जो साबितियों हैं। अफगान तालिबान खारिजियन हिंदुस्तानी फितने दाइश खिलाफ कार्रवाई करे।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज। सचल की सरमस्त धरती
3: फातिये मेहरान सिंध की एक और पहचान।
2: GAFM 88 नेटवर्क
3: सिंध की आवाज।
4: अब चमकती नर्म और बेदाग जेल एक क्रीम की दूरी पर हेमी नेचुरल्स के पिंक डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम। इसमें शामिल है SPF 30 जो सूरज की नुकसानदेह श्वाओं से तहफ्फुज़ दे, कोचिक एसिड जो जिल्द से दाग धब्बे खत्म करे, और विटामिन सी ग्लूटाथायोन और आर्बोटिन जैसे वाइटनिंग एजेंट्स जो आप खुद ही एक खूबसूरत चमकदार और नेचुरल ग्लो। हेमी नेचुरल्स पिंक ग्लो ब्यूटी क्रीम, हर दिन हो एक नया ग्लो, एक नया कॉन्फिडेंस। पिंक डायमंड ग्लो बाय हेमी नेचुरल्स।
5: हाँ नरम चमक ऐं साफ जिल्द रुगो एक क्रीम की दूरी ते पेश आहे हेमे नेचुरल्स की डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम जिनमें शामिल आहे SPF 30 सिज के नुकसानकार किरणन का बचाव लाए, कोजिक एसिड ऐं जिल्द मां दाग धब्बा निशानात खत्म करण लाए, विटामिन सी ग्लूटाथायोन ऐं आर्बोटिन जेके डियन तव्हां जे चेहरे के कुदरती साफ ऐं चमकदार ग्लो। रोजानो इस्तेमाल करियो हेमे नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम ऐं हासिल करियो नओ ग्लो नओ एतमाद। हर डी हुजे एक नओ ग्लो एक नओ कॉन्फिडेंस। हेमे नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम

अब चमकती नर्म और बेदाग जेल एक क्रीम की दूरी पर। हेमी नेचुरल्स के पिंक डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम, इसमें शामिल है SPF 30 जो सूरज के नुकसानदेह श्वाओं से तहफ्फुज़ दे, कोचिक एसिड जो जिल्द से दाग धब्बे खत्म करे, और विटामिन सी, ग्लूटाथायोन और आर्बोटिन जैसे वाइटनिंग एजेंट्स जो आपको दे एक खूबसूरत चमकदार और नेचुरल ग्लो। हेमी नेचुरल्स पिंक ग्लो ब्यूटी क्रीम, हर दिन हो एक नया ग्लो, एक नया कॉन्फिडेंस। Pink Diamond Glow by Hemi Naturals.

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम लिसनर्स, जी एस अखर एफ एम 88 जी लाइव स्टूडियोज का प्रोग्राम रौनक महफिल सान करे आवा हां आवा जो पैंजो मेज़बान बाबर शेख इन उम्मीदन साथ आवा बिल्कुल ठीक ठाक हुंदा। अल्लाह पाक आवा सबनी ते पैंजी रहमतुन जा साया बरकरार रखे, आवा जिते हुजो खुश हुजो आबाद हुजो। दोस्तों बिल्कुल रौनक महफिल प्रोग्राम आहे जी एफ एम नेटवर्क आहे, ऐं अॼु जी तारीख़ आहे 11 मई 2026 ऐं सूमर जी शाम आहे 7:10 एग्ज़ेक्ट टाइम थियो आहे, यानी प्रोग्राम अवां बिल्कुल लाइव ॿुधी रहिया आहियो। त दोस्तों तव्हांखे ख़बर आहे त प्रोग्राम में अवांजे लाइ मुख़्तलिफ़ सेगमेंट्स हूंदा आहिनि मूं वटि, ऐं सेगमेंट सां गॾोगॾु प्रोग्राम में अव्हांजी फ़रमाइश बि हूंदी आहे, ऐं अव्हांजी फ़रमाइश सां गॾोगॾु प्रोग्राम में कुझु पैगाम बि हूंदो आहे जेको मुंहिंजे ज़िमे हूंदो आहे अव्हां ताईं पहुचाइणु, बिल्कुलु हैमे वारनि जो, छाकाणि त हुननि स्पॉन्सर कयो आहे हीउ शो। त दोस्तों बिल्कुलु अव्हांखे ॿुधायां त अॼु जे प्रोग्राम में जेको सेगमेंट आहे उहो आहे अव्हांजे लाइ ॼाण जी खाण, ऐं ॼाण जी खाण सेगमेंट में अॼु सवाल कहिड़ो आहे इहो ॿुधाइण खां पहिरियां तव्हांखे इहो बि ॿुधाईंदो हलां त तव्हां पंहिंजी फ़रमाइश बि ॿुधी सघो था अॼु जे प्रोग्राम में, पंहिंजा फेवरेट सिंगर्स ॿुधी सघो था एज़ वेल। करिणो छा आहे, तव्हांखे सिंपली पंहिंजे फेवरेट सिंगर जी फ़रमाइश कंदो, जंहिं सिंगर जा वधीक वोट हुया उहो सिंगर प्रोग्राम में मां शामिल कंदुसि, ठीकु आहे। सो प्रोग्राम में शामिल कीअं थो थी सघिजे, अवां लाइव कॉल या व्हाट्सएप जे ज़रिए मूंखे जॉइन करे सघो था। नंबर आहे 03000113488, ऐं मैसेज जे ज़रिए बि जॉइन करे सघो था। मैसेज जे लाइ पंहिंजे मोबाइल जे राइट मैसेज ऑप्शन में वञो, एस के आर लिखो, स्पेस ॾियो पंहिंजो मैसेज 8881 ते, यानी 8881 ते सेंड करे छॾियो, ऐं फेसबुक ते ॿुधण जे लाइ बल्कि फेसबुक खे छॾियोसि तव्हां, ठीकु आहे, GAFM.net ते अची करे तव्हां असांजी वेबसाइट जे ज़रिए प्रोग्राम ॿुधी सघो था। सो जीअं मूं ॻाल्हि कई त हीउ प्रोग्राम स्पॉन्सर आहे अवां ताईं पहुचाइण लाइ तावन कयो आहे हैमे नेचुरल्स वारनि, त हैमे नेचुरल्स वारनि दावा कई आहे त हिननि जी प्रोडक्ट आहे जंहिंमें SPF 30 शामिल आहे, कॉजिक एसिड, ग्लूटाथायोन, वाइटामिन सी, आरबूटीन ऐं ॿिया केतिरा ई नेचुरल इंग्रीडियंट्स जेके अवांजे चेहरे जी स्किन जे लाइ तमामु घणा फ़ाइदेमंद आहिनि। SPF 30 तव्हांखे सन प्रोटेक्शन ॾिए पियो, कॉजिक एसिड्स इन में जेको शामिल आहे चेहरे तां दाग धबा निशाना जो ख़ात्मो करे पियो, ऐं ग्लूटाथायोन, वाइटामिन सी ऐं आरबूटीन इहो वरी अव्हांजे चेहरे जी स्किन खे बिल्कुलु नेचुरल ग्लो ॾिए पियो, यानी तव्हांजो चेहरे जी स्किन जेका आहिनि उहा नेचुरल ग्लो करे पई। कुदरती निखार जॾहिं अचे पियो त हर कोई अव्हां खां इहो ई पियो पुछे त बाबा अव्हांजे चेहरे ते जेको इहो निखार आहे इन जो राज़ छा आहे, ऐं तव्हां चओ पिया बाबा इहो सॼो कमाल आहे हैमे ब्यूटी जो, बिल्कुल। त हैमे नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम इन जी प्राइस जी मां ॻाल्हि कयां त हिननि ॿुधायो आहे 330 to 360 rupees वेरीज़ करे पई, पर कुझु दुकानदार तव्हांखे 330 में ॾियनि पिया, वरी 340 या 350 या 360 ताईं तव्हांखे इहा हैमे ब्यूटी क्रीम ईज़ीली मिली सघे थी। गॾो गॾु अव्हांजे शहर जे वेझे स्टोर ते स्पेशली शाही बाज़ार जॾहिं अवां वञो पिया त उते तव्हांखे आसानी सां हैमे ब्यूटी क्रीम मिली वेंदी, ऐं सेकेंडली इन जो हेल्पलाइन नंबर बि आहे, जेकॾहिं अव्हांजे शहर में अवेलेबल न हुजे त तव्हां सिंपली इन जे हेल्पलाइन नंबर ते बि कॉल करे सघो था, ऐं जीअं इन्हनि खां पुछी सघो था त तव्हांजे शहर जे वेझे कहिड़े स्टोर ते हैमे ब्यूटी क्रीम मौजूदु आहे। त इन जो हेल्पलाइन नंबर आहे 03671354 07। नंबर वन सेकेंड मां रिपीट कयां पियो, 03-36-71-35-407। इन नंबर ते तव्हां कॉल करे हैमे ब्यूटी क्रीम जे बारे में हिननि खां मालूमात वठी सघो था, ऐं जी पुछी सघो था त तव्हांजे शहर जे वेझे कहिड़े स्टोर ते हैमे नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम अवेलेबल आहे, ठीकु आहे, डन थी वियो। सो दोस्तों तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त प्रोग्राम में अच्छा सेल्फीज़ जे लाइ बि हिननि ॿुधायो आहे हैमे ब्यूटी क्रीम जो तव्हां इस्तेमालु कंदड़ आहियो त हिन सां गॾु पंहिंजी प्यारी प्यारी सेल्फी जेके आहिनि असांखे व्हाट्सएप ते तव्हां सेंड कंदो त तव्हां क़ुरानंदाज़ी में शामिल थी सघो था, ऐं एवरी वीक जेको आहे क़ुरानंदाज़ी कबी आहे सेल्फी विनर ऑफ द वीक खे 500 रुपियनि जो कैश इनाम मिलंदो आहे, त 500 रुपियनि जो कैश इनाम अव्हांखे बि मिली सघे थो। पर हाणे करिणो छा आहे, तव्हांखे सेल्फियूं तव्हांखे इन वीक मोकिलणियूं आहिनि, ऐं इन वीक जॾहिं अव्हां सेल्फीज़ मोकिलींदो न त हुनजी क़ुरानंदाज़ी मां कंदुसि सुभाणे 12 तारीख़ आहे, ऐं ख़ैर सां 12, 13, 14 तारीख़ ते मां हिन जी क़ुरानंदाज़ी कंदुसि, ठीकु आहे, यानी थर्सडे ते क़ुरानंदाज़ी करे वरी पोइ मां अव्हां खां हथ ॿधी मोकिलाईंदुसि हिन प्रोग्राम में कुझु ॾींहनि जे लाइ, ठीकु आहे, वरी कुझु ॾींहनि खां बाद में वरी हिन प्रोग्राम में अॻियां अव्हां सां मुलाक़ात कंदुसि, ठीकु आहे। त थर्सडे ताईं तव्हां धड़ाधड़ पंहिंजी सेल्फीज़ मोकिलियो त जीअं तव्हांजी उहे सेल्फीज़ मां क़ुरानंदाज़ी में शामिल करे सघां, ऐं पोइ थर्सडे ते क़ुरानंदाज़ी करे अव्हां खां पोइ टाटा बाय बाय कयां हिन रौनक महफ़िल में, ठीकु आहे। सो सेल्फी मोकिलण लाइ असांजो व्हाट्सएप नंबर अथव 03000113488
888 ऐं मैसेज बि तव्हां करे सघो था मैसेज जे लाइ तव्हां एस के आर लिखो स्पेस ॾियो पंहिंजो मैसेज 888 यानी 8881 ते सेंड करे छॾियो ऐं फेसबुक ते ॿुधण जे लाइ असांजो फेसबुक पेज आहे जी ए एफ एम उते अची करे तव्हां असांखे ज्वाइन करे सघो था सो प्रोग्राम हींअर तमामु प्यारो प्यारो कलाम अवां जे लाइ प्ले कयो आहे तव्हां कलाम ॿुधो पर कलाम प्ले करण खां पहिरियां अवां जे लाइ जेका अॼु ॼाण जी खाट सेगमेंट में अवां जे लाइ सवाल आंदो आहे तमामु सवलो ऐं दिलचस्प सवाल आहे दिलचस्प आहे ठीकु आहे 500 रुपियनि जो तव्हांखे कैश इनाम ॾियणो आहे तव्हां इहो ॿुधाईंदा त जेको 500 रुपियनि जो आहे नोट पाकिस्तानी नोट उनजे पुठियां छाजी तस्वीर छपियल आहे ठीकु आहे आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन द पिक्चर ऑन द बैक साइड ऑफ 500 रुपीज पाकिस्तानी नोट इज ठीकु आहे उहा तव्हांखे पिक्चर ॿुधाइणी आहे कहिड़ी पिक्चर छपियल आहे पाकिस्तानी नोट 500 रुपियनि जे पुठियां तव्हां हिन जो जवाबु ॾींदव ऐं प्रोग्राम में शामिल ॾियां एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम मां अव्हांसां इन सां रेलिवेंट थोरी एडिशनल इंफॉर्मेशन शेयर कंदुसि त जीअं अव्हांजी नॉलेज में इज़ाफ़ो थिए त मूंसां गॾु कनेक्ट रहिजो इन रौनक महफ़िल में हींअर अव्हांजे लाइ तमामु प्यारो प्यारो कलाम प्ले कयो आहे तव्हांजी कलाम ॿुधो ऐं प्रोग्राम में अव्हां व्हाट्सएप जे ज़रिए मूंखे वॉइस नोट्स बि वधि खां वधि सेंड कंदव असांजो व्हाट्सएप नंबर आहे 03000 11 34 88 ऐं अलहमदुल्ला मां हीअं व्हाट्सएप जीअं खोलियो आहे त तव्हांजो जेके आहिनि अच्छा हीअ सेल्फी आहे हा सेल्फियूं अचणु शुरू थी वियूं आहिनि ऐं माशाल्लाह यार महिरबानी करे नालो ज़रूरु लिखो यार नालो न लिखंदव न त मूंखे ख़बर कीअं पवंदी त हीअ सेल्फी कंहिंजी आहे पर हीअ मूंखे सुञातल लॻे पियो यार हीअ मूंखे लॻे पियो ग़ुलाम रसूल मरी त न आहे बिल्कुलु मां सुञातो सही सुञातो आहे न भाउ तव्हांखे ॻाढ़ो रुमाल कुल्हे ते पियो आहे ऐं हैमी ब्यूटी क्रीम हथ में आहे अव्हां ग़ुलाम रसूल मरी त न आहियो कंफर्म कयो मूंखे प्लीज़ सो हींअर प्रोग्राम में अव्हांजे लाइ तमामु प्यारो प्यारो कलाम प्ले कयो आहे तव्हांजी कलाम ॿुधो ऐं रौनक महफ़िल में 8 वॻे ताईं मूंसां गॾु रहिजो

अब चमकती नर्म और बेदाग जेल एक क्रीम की दूरी पर। हेमी नेचुरल्स के पिंक डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम, इसमें शामिल है SPF 30 जो सूरज के नुकसानदेह श्वाओं से तहफ्फुज़ दे, कोजिक एसिड जो जिल्द से दाग धब्बे खत्म करे, और विटामिन सी, ग्लूटाथायोन और आर्बोटिन।

0: वालेकुम
1: असलाम। जबरदस्त यार, जबरदस्त वहीद भा, जबरदस्त आहे। अचो त तव्हांखे गानो ॿुधाए रहिया फरज़ाना परवीन जी आवाज़ में न रौनक महफ़िल में। सवाल अथव प्रोग्राम में त 500 रुपियनि वारो जेको नोट आहे न उन जे पुठियां छा छपियल आहे, तव्हां ॿुधाईंदो प्रोग्राम में शामिल थी। असांजो व्हाट्सएप नंबर आहे 03000113488।

0: खाण नरम चमक ऐं साफ जिल्द रुगो हिक क्रीम जी दूरी ते पेश आहे हेमे नेचुरल्स जी डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम जंहिं में शामिल आहे एसपीएफ 30 सिज जे नुक़सानकार किरणनि खां बचा लाइ कोजिक एसिड ऐं जिल्द मां दाग धब्बा निशानात ख़तम करण लाइ विटामिन सी ग्लूटाथायोन ऐं आर्बुटिन जेके ॾियनि तव्हां जे चेहरे खे कुदरती साफ़ ऐं चमकदार ग्लो रोज़ानो इस्तेमाल करियो हेमे नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम ऐं हासिल करियो नओ ग्लो नओ एतमाद हर ॾींहुं हुजे हिकु नओ ग्लो हिकु नओ कॉन्फिडेंस हेमे नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम
1: All dear listeners, बिल्कुल रौनक महफिल प्रोग्राम में बाबर शेख आया हुआ असां गॾु ऐं रौनक महफिल प्रोग्राम में हेमे ब्यूटी क्रीम जे बारे में अव्हां खे ॿुधायो वञे पियो अबाउट द प्रोडक्ट छाकाणि त स्पॉन्सर शो आहे त हिन जी स्पॉन्सरशिप बि जेका आहिनि मां अव्हां ताईं पहुचायां पियो ऐं हिन जो पैगाम अव्हां ताईं कन्वे कयां पियो ऐं इहो पैगाम जेको हिन जो आहे न तमामु घणो फ़ाइदे वारो अव्हां जे लाइ साबित थी सघे पियो जेकॾहिं अव्हां इन्हनि जी प्रोडक्ट ते थोरो गौर वीचार करे इस्तेमालु करे सघो छाकाणि त जिन जिन इस्तेमालु कई आहे उन्हनि इहो ई फीडबैक ॾिनो आहे त बाबर भा वाह वाह वाह वाह ऐं वाह वाह हेमे ब्यूटी त वाह वाह आहे त बिल्कुलु दोस्तो तव्हां बि हेमे ब्यूटी जो फ़ाइदो हासिलु करे सघो था ऐं विद इन 7 डेज़ तव्हांखे हिन जो रिज़ल्ट मिली सघे पियो तव्हांजे चेहरे ते दाग धब्बा मोहिड़ा छावां झुरियूं छुरियूं न बल्कि झुरियूं जी हा ऐं डार्क सर्कल्स अगरि आहिनि उहे तव्हांजा दूरि थी सघनि था विद इन 7 डेज़ तव्हांखे जेको हिन जो रिज़ल्ट मिलंदो न तव्हां थींदा बाबर भा या हेमे आहे या कुझु जादू आहे मां थींदो आहियां पाण ॼाणो हेमे अथव इस्तेमालु करे ॾिसो रिज़ल्ट कीअं थो मिलेव सो वधीक तव्हां हिन मुतालिक़ का बि मालूमात तव्हांखे घुरिजे त तव्हां हिन जे हेल्पलाइन नंबर ते कॉल करे सघो था नंबर आहे 0336 7135407 जी हा 0336

0: पंट्री है 71 पंट्री है 470. कुछ मैसेज आए, बाबर ब्रो हाउ आर यू, आई एम फरजाना बलोच एंड आई एम एंजॉयिंग योर प्रोग्राम बाबर ब्रो. थैंक यू फरजाना सिस एंड यू आर एंजॉयिंग द शो एंड व्हाट अबाउट द प्रोडक्ट हैमे ब्यूटी, प्लीज टेल मी अबाउट द प्रोडक्ट एज वेल. सो कुछ वॉइस नोट्स भी आए हैं, कुछ मैसेजेस भी आए. मैसेज छापा चवन था ओके मैं नूर अली खास के लिए विलेज डॉक्टर यार मोहम्मद झांझी से एंड आपके क्वेश्चन का आंसर है 500 रुपए के नोट के पीछे 500 रुपए के अल्फाज साथ भावल दीन जकरिया का. चलें जी देखते हैं आपने जवाब सही दिया है या नहीं. सो अलाए किड़ो 500 जो नोट डिठो आया दे मेरा लिखो ही वॉइस नोट आए बुदो.
1: अल्लाह पाक तवां के बाबर साईं आए तवां जी पूरी टीम के पंज बार चौदह के सदके आबाद रखे. जवार मोहम्मद बचल शंबाणी अली हसन बाबो सोनड़ो भाव सोना खान मस्तोई वफा वईद जतोई जेकी भी नजीर अहमद मंगरियो साहब जेकी संगत बुधे थी पारा सैयद गुलाब अली शाह बुखारी तरफा अस्सलाम वालेकुम या अली मदद शमन जो प्रोग्राम गानड़ो जो आसो वो हली रो मुझे सजन सही जोर आयो बुधी रहा हूँ तहजी वडी वडी मेहरबानी अली अली
0: अली अली अदा तांजी मेहरबानी. बाकी यार यो शमन जो प्ले दन कयो माए लाइक केड़ो तो भा असा जो प्रोग्राम बुधी असा जो गुलाबड़ो लाइक केड़ो तो बुधी शाह साहब तांजी मेहरबानी थैंक यू अदा. एकड़ो ही वॉइस नोट अच्छो तो बुधू छा पे चवन.
2: अस्सलाम वालेकुम यार मदद बाबर बा मां अब्दुल्ला शर पो गलाए अकरी चदे या ए मुजो बाबा भी बुधे बो अली क्लब सर तो बाबर बा तां जो कोई सवाल को है त 500 नोट ए पोया केड़ी शे छपेल है त उने पोया जका छपेल है तस्वीर वो है बादशाही मस्जिद तो असंगे इन प्रोग्राम में लाजमी ऐड कयो त तवाई वडी मेहरबानी थिंदी.
0: ठीक आधा तां जी में शामिल छ तवा ए बिल्कुल तां के ऐड करे छियो है बियो हुकुम क्यों भा. बाकी है में जे बारे में तां कुछ बुधायो कोन वेल इट्स ओके. एकड़ो ही वॉइस नोट ए ही छ पे चवन अचो तो बुधू.
3: अस्सलाम वालेकुम मीरपुर खास गोठ वली मोहम्मद रिंद खान इम्तियाज अली बंगलाणी बाबर वाहे में ब्यूटी क्रीम बेहतरीन चेहरे जी रौनक आई गायण वजाण जो सिंग में डना है तांके बा हेमी ब्यूटी क्रीम जे बारे में मारवाड़ी में लफ्ज बुधाया था

0: करूं चरेरी लाल के में ब्यूटी क्रीम चरो मां जो होए जासे ॾाढो सुठो पवर भाउ मुंहिंजा कुझु दोस्त काठड़ी खां गुलाम रसूल मरील विलेजवान श्याम यूसी विके संगी डिस्ट्रिक्ट लाड़काणे खां असांजो क़ाबिल एतराम मोहतरमा अशरफ अली मिराली सज्जन अली मिराली तनवीर अली मिराली मुमताज़ अली मिराली लाड़काणे खां आसिफ अली चाचर तव्हांजो प्रोग्राम ॿुधी रहियो आहे शराज अली बंगलाणी मां बिलावल बंगलाणी दिलावर अली बंगलाणी अस्सलाम वालेकुम
1: वालेकुम अस्सलाम माला अली मदद भाउ बंगलाणी साहब तव्हांजी महिरबानी प्रोग्राम में शामिल थिया थैंक यू वॾा ऐं लिसन्स बिल्कुलु तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त हेमे नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम जेका आहिनि इन में जेको कॉजिक एसिड शामिल आहे इहो तव्हांजे चेहरे तां दाग धबा निशानात जो ख़ात्मो करे सघे थो ऐं विद इन 7 days तव्हांखे इन जो रिज़ल्ट जेको मिलंदो न तव्हां पाण चवंदा बाबर भा हेमे हेमे आयो त मां बि इहो ई पियो चवां बाबा हेमे हेमे अथव अच्छा वठण वक़्तु तव्हां शाही बाज़ार तव्हां जॾहिं वञो पिया त तव्हांखे हुते सुठी कॉस्मेटिक्स वारे वटि आसानी सां मिली सघे पई वधीक मालूमात लाइ तव्हां हिन जे नंबर ते कॉल कंदव नंबर आहे 0336713547 जी हा 0336713547 इन नंबर ते तव्हां कॉल करे हेमे ब्यूटी क्रीम जे बारे में इन्हनि खां मालूमात वठी सघो था ऐं जी पुछी सघो था त तव्हांजे शहर जे वेझे कहिड़े स्टोर ते हेमे नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम अवेलेबल आहे ठीकु आहे सो हीअं प्रोग्राम में अव्हांजे लाइ शामिल कयो आहे ममताज़ लाशारी जी आवाज़ में प्यारो प्यारो गानो अचो त ॿुधूं पिया हिन रौनक महफ़िल में

0: हाँ नरम चमक आई साफ जल्द रुगो हिक क्रीम जी दूरी ते पेश आहे हेमे नेचुरल्स जी डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम जिमे शामिल आहे SPF 30 सिज जी नुकसानकार किरणन खा बचा लाए कोजिक एसिड आई जल्द मा दाग धब्बा निशानात खत्म कर लाए विटामिन सी ग्लूटाथायोन आई आर्बुटिन जेके डियन तव्हांजे चेहरे के कुदरती साफ आई चमकदार ग्लो रोजानो इस्तेमाल करियो हेमे नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम आई हासिल करियो नो ग्लो नो एतमाद हर डी हुजे एक नो ग्लो एक नो कॉन्फिडेंस हेमे नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम
1: सो लिसनर्स बिल्कुल ममताज लाशारी जी आवाज में यार जबरदस्त कलाम आवा बुधियो मैडम ही मखण दा चाणा उम्मीद आया आगे पसंद आयो हुंदो सो आवा जा कुछ मैसेजेस रह लाइन जे के शामिल करे प्रोग्राम में बाकी 12 मिनट बचाइन आई पो आवा का मोकलाया पियो चनी सिर सोलंगी गोठ वासन दलग मीरपुर खास का जवाब आहे ओके अदा गुलाब लगारी गोठ बशाम खान रिंद से गाजी खान रिंद चाचा मंठा रिंद रिजवान अली रिंद फैजान अली रिंद शहजाद अली रिंद छोटी कोनैन जहरा आपका शो अच्छा चल रहा है आपकी कंपेयरिंग अच्छी है आपका आवाज अच्छा है पहली मर्तबा शामिल हो रहे हूँ यूर वेलकम भाई आपको और आपकी पूरी जो है रिंद ब्रादरी को वेलकम कहते हैं पूरी फैमिली को हम वेलकम कहते हैं ठीक है आपका बहुत शुक्रिया सो झुलेखा खालिक लाशारी जवाब आए बादशाही मस्जिद ओके भा ॾिसूं पिया ऐं तनेसर सोलंगी साहब अदा तव्हांजो जवाब मूं ताईं पहुतो आहे अज़ादार अहमद फ्रॉम लाड़काणे खां बाबर भाई अस्सलाम वालेकुम या अली मदद वालेकुम अस्सलाम मौला अली अलैहिस्सलाम मदद कैसे हैं आप मैं बिल्कुल ठीक ठाक बाबर भाई आपने FM कैसे ज्वाइन किया आपका इंटरेस्ट कैसा है FM में ये बताएं हमें टॉपिक का जवाब है ओके एंड कोई सॉन्ग तो सुनाएं सूफान अबड़ो का आज आपको मेरी फरमाइश चलानी पड़ेगी आई विल ट्राई अदा

0: सो दोस्तों अजादर भाई, अजादर भाई ये जो है बातें फिर कभी, ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। सो आइए कुछ वॉइस नोट्स इंक्लूड करते हैं प्रोग्राम में। और ये हमारे साथ कौन है, ये इन्होंने बिल्ली भेजी है, फिर इन्होंने जो है हंसता हुआ स्मेली भेजा है। इट्स ओके भाई, आप हैं कौन, अपना नाम जरूर लिखा करें। एक ये वॉइस नोट शामिल करते हैं प्रोग्राम में, आइए सुनते हैं।
1: बाबर बा अस्सलाम वालेकुम, बाबर बा माशूक मौलाई पियो ॻाल्हायां शहर बांदी खां। तव्हांजो शो ॿुधी रहियो आहियां, तमामु सुठो हली रहियो आहे। ऐं तव्हांजो सुवाल ॿुधो आहे, सो सुवाल जो जवाबु इहो आहे त 500 जे नोट जे पोयां बादशाही मस्जिद जो ई तस्वीर छापियल आहे। सुवाल जो जवाबु इहो आहे साईं।
0: चलो साईं ठीकु आहे, हिकिड़ो ही वॉइस नोट।
2: अस्सलाम वालेकुम बाबर भाई, छा हाल आहे, ख़ुशि आहियो। कामरान अली मैसर रफ़ी मैदर खां तव्हांजे प्रोग्राम ॿुधायां पियो वेठो, ऐं असां सॼी फैमिली तव्हांजे प्रोग्राम ॿुधे पई आहे। स्पेशली सलाम आहिनि साईं इमदाद अली शाह बुखारी खे, जेको तव्हांजे प्रोग्राम ॿुधे पियो, ऐं ॿी सॼी जेके संगत ॿुधे पई, सॼो जेको ॿुधंदड़ सभिनी खे मां सलाम ॾींदुमि, वॾी महिरबानी साईं।
0: वालेकुम अस्सलाम। हिकिड़ो मैसेज हिकिड़े ॾियण जो, ठीकु आहे। सो ही छा पिया चवनि पिया, नज़ीर अहमद मंगरियो, मोहम्मद सुलेमान, अब्दुल सत्तार, अब्दुल हमीद, फ़क़ीर नूर मोहम्मद भारो, फ़क़ीर शेर मोहम्मद कांधड़ो, नसरुल्ला मंगरियो, मोहम्मद गुलजोणी जो, नबन उर्फ नबी बख्श, हाजी गुलज़ार। अदा ख़बर आहे तव्हांखे व्हाट्सएप जो सिलसिलो मां शुरू ई न लाइ कयो त जीअं तव्हांजा हेॾा नाला जेके आहिनि इहे मां तव्हां पंहिंजे आवाज़ में चओ। हाणे अवां व्हाट्सएप यूज़ कयो पिया ऐं व्हाट्सएप ते बि वरी जेको आहे त तहरीरी सूरत में मैसेज मोकिलियो पिया, जेको आहे ईअं न करणु घुरिजे। बहरहाल वॉइस नोट सेंड कयो छाकाणि त व्हाट्सएप यूज़र आहियो तव्हां। ऐं हीउ कहिड़ा आहे सज्जन अली मीराली साहबु, बाबा प्यारी प्यारी सेल्फी मोकिली आहे, बाबा ताड़ियूं थी वञनि। सज्जन अली मीराली साहबु, मीराली साहबु बाबा चश्मो पातल आहे, तमामु प्यारो छोकिरो आहे, ऐं हैमे ब्यूटी क्रीम इस्तेमालु कंदड़ आहे। वाह साईं वाह, वाह सॼण वाह, वाह सॼण वाह। तव्हांजे लाइ गानो मां वेंदे वेंदे प्ले कयां पियो, स्पेशली तव्हां मीराली बिरादरी जे लाइ मूंखे ॾाढी ख़ुशी थींदी आहे। ऐं हीउ केरु आहे असां सां गॾु, हीउ चवनि पिया त तेरी ख़ैरियत का ही ज़िक्र रहता है दुआ में, मसला सिर्फ़ु मोहबत का ही नहीं फिकर का भी है। बिल्कुल आपसे यही इल्तिजा है कि आप मुझे दुआओं में जरूर याद रखें और मैं भी आपको दुआओं में याद रखूंगा। जा तुझे माफ किया, आगे क्या होता है वो लाइन आपके लिए स्पेशली, ठीक है। सो एक ही वॉइस नोट, आइए सुनते हैं इनका क्या कहना है इस रौनक महफिल में।
3: अस्सलाम वालेकुम या अली मदद गोट शेरमंद मायरन का सैयद गुलाब।
0: अच्छा ही भी गुलाबड़ो असा जो भा डबल थी गया है। अदा वॉइस हिकड़े जो हिकड़ो शामिल थिंदो, ठीक है, हिकड़ो ही वॉइस नोट।
4: अस्सलाम वालेकुम बाबर भाउनि जा, कहिड़ा हालणी ख़ुशि आहियो, तबियत तव्हांजी ठीकु आहे। शामीर अली चाचड़ पनो अकिल खां ॻाल्हायां पियो, प्रोग्राम अव्हांजो तमामु बहितरीन सुठो लाजवाब हले पियो, ऐं हेमी बीटी क्रीम सो इस्तेमालु कयां पिया, ऐं तमामु बहितरु सुठो रिज़ल्ट आहे। ऐं असां दोस्तनि खे चवंदासीं हेमी बीटी क्रीम इस्तेमालु कयां, तमामु बहितरु सुठो आहे, ऐं प्रोग्राम अव्हांजो तमामु बहितरीन, ऐं जेके पंहिंजी प्यारा दोस्त ॿुधी रहिया आहिनि खोड़ सारा सलाम।
0: चलो वालेकुम अस्सलाम यार, हाणे ॿ टे कॉलर्स खे शामिल कयां, त कॉलर जेके मूंखे कावड़ माना उन्हनि खे तव्हां पहुचाईंदो, बल्कि कॉलर्स जो जॾहिं मां नालो खणंदो आहे न त असांजो सेट जेको आहे न मोबाइल उहो थींदो आहे न ईअं कीअं ईअं कीअं। सो इट्स ओके दोस्तों, तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त प्रोग्राम में तकरीबन 7 महीनो आहे यार, ख़ैर सां तव्हां जेके प्यारा लिसनर आहियो मुंहिंजा, अलहमदुल्ला तमामु प्यारा आहियो, ऐं ॿाहां ॿेली बि आहियो मुंहिंजा हिकिड़े क़िस्म जा, जेके हैमे ब्यूटी क्रीम इस्तेमालु कंदड़ आहिनि। जॾहिं हैमे जे बारे में ॿुधाईंदा आहिनि न त बिल्कुलु ॾाढी ख़ुशी थींदी आहे, छाकाणि त स्पॉन्सर शो आहे। ॾिसो स्पॉन्सर शो में असांखे हुननि जो पैगाम अवां ताईं कन्वे करिणो पवंदो आहे, हिन जो मक़सदु इहो कतन कोन्हे त मां तव्हांखे इंसिट्स कयां ऐं तव्हांखे ज़ोर भरियां त न यार इहा इस्तेमालु करणी अथव, न मां जस्ट हुननि जो पैगाम अवां ताईं कन्वे कयां पियो। हाणे अव्हां जे मथां तव्हां हिन जी प्रोडक्ट इस्तेमालु कयो पिया, अगरि सुठो रिज़ल्ट मिले पियो त तव्हां रुटीन लाइफ में शामिलु कयो पिया, नथो मिले त का ज़ोर ज़बरदस्ती कोन्हे, पर 7 महीनो आहे ख़ैर सां, ऐं हर को इहो ई ॻाल्हि करे पियो त हैमे जो रिज़ल्ट सुठो मिलियो आहे, त मूंखे ख़ुशी थींदी आहे तव्हां जहिड़ा प्यारा लिसनर्स आहिनि। ऐं जॾहिं ही कहिड़ा ही छा पियो चए, हथ ॿधिया अथई हैमे खे, ठीकु आहे, आपको जो है हैमे खे हथ हलाए छो ॿधिया अथई, आई डोंट नो। अच्छा हैमे वारनि खे जेको आहे न तव्हां इहो फीडबैक ॾेई सघो था त तव्हांखे प्रोग्राम कीअं लॻियो, 7 महीना जेका हुन स्पॉन्सरशिप कई, उनजी प्रोडक्ट कीअं लॻी, उनजो हेल्पलाइन नंबर तव्हां नोट करे वठो ऐं कॉल कयो धड़ाधड़। इहो बि चई सघो था बाबा छा आहे छा आहे छा आहे छो स्पॉन्सरशिप जेका आहे ख़तम पई कई वञे। बहरहाल नंबर आहे 0336-7135-407। नंबर वन सेकेंड रिपीट कयां पियो, 0336-7135-407। तव्हां हिन नंबर ते कॉल करे हैमे जे बारे में हिननि खां मालूमात वठी सघो था। ऐं दोस्तों बिल्कुलु जेको आहे त जुमेरात ते यानी ख़मीस ते पाण प्रोग्राम में क़ुरानदाज़ी कंदासीं।

0: एसी चल रहा है, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं है।
1: एआई वाला स्मार्ट एसी, लो बिल वो
2: हाण नरम चमक आई साफ जल्द रुगो हिक क्रीम जी दूरी ते पेश आहे हेमे नेचुरल्स जी डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम जे में शामिल आहे एसपीएफ 30 सिज जे नुकसानकार किरणन खा बचा लाए कोजिक एसिड आई जल्द मा दाग धब्बा निशानात खत्म कर लाए विटामिन सी ग्लूटाथायोन आई आरबुटिन

0: सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन चटाभेटी इम्तिहान के नतीजन खिलाफ एहतजाज कदड़ उम्मीदवार खिलाफ कानूनी कार्रवाई की धमकी दई छी। फेल उम्मीदवार के बीहर इम्तिहान लाय तैयारी करने की भी सलाह। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन है फेल उम्मीदवार शिकायत लाय राबतो कन एहतजाज का पासो कन बी सूरत में कार्रवाई थी। फेल थीदड़ उम्मीदवार बीहर इम्तिहान लाय तैयारी कन। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन पेंजे इम्तिहानी अमल में शफाफियत मेरिट ए ईमानदारी के यकीनी बनाने लाय हर मुमकिन कोशिश कर रही है। मुझे खानदान जो को भी मानू सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में पास ना है थो वे वजीर मुराद अली शाह की वजाहत। साफियन के सवाल के जवाब लीदे वे वजीर मुराद अली शाह मुझे खानदान जो को मानू पास थो है तो नालो बुधाए बाकी मुझे खानदान जो मानू सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में पास ना है थो। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन गडियल चटाभेटी इम्तिहान 2024 के तकरारी पढ़ियल नतीजन दौरान साल 2025 के चटाभेटी इम्तिहान लाइ स्क्रीनिंग टेस्ट 30 जून से वठण जो ऐलान करे छो। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन मूजिब नई गडियल चटाभेटी इम्तिहान 2025 लाइ स्क्रीनिंग टेस्ट 30 मई 2026 से वरती वेंदी। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में मेरिट की लताड़ खिलाफ एहतजाज कदड़ फयाज शहर ए रफीउल्लाह कुरैशी की गिरफ्तारी का अग वारी जमानत मंजूर। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन सामिया मेरिट की लताड़ खिलाफ एहतजाज कदड़न ते दहशतगर्दी एक्ट तहत केस दाखिल कराया हो। अदालत केस फयाज शहर ए रफीउल्लाह कुरैशी की 50,000 रुपये के मचलकन एवज जमानत मंजूर कई।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: छा अहां जो चेहरो बेजान आई डल लगे थो हाने वक्त आहे चमकण जो है में डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम सा कुदरती जुजन सा तैयार कयल जेका दे कुदरती निखार साफ नरम आई रोशन चेहरो पहरे ही इस्तेमाल में फर्क महसूस करियो है में डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम तहां भी चमकायो पहजो चेहरो जीए हुजे हीरो है में डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम चेहरे जी असल चमक जो राज।
3: मेरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
4: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंग सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारियत दस्तियाब आहिन।
3: हाने यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी।
4: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 02424601000।
2: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पेंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जैमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी

तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएमडी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाए 03201800003।

ऐं नहनि एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असुर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज़ रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। वधीक राब्ते जे लाइ 0300-3385-569, 0300-3385-69।

0: It's 8:30 PM. This time check is brought to you by
1: Hemay Diamond Glow Bleach Cream, जो deep clean करे और दे 4 गुना brightness, चमक ऐसी diamond skin जैसी. Hemay Diamond Glow Bleach Cream.
2: अब आपकी खूबसूरती का fan, White Age Beauty Cream.

0: वाइट एच ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन्स और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ जिसके मिनरल्स स्किन में फौरी एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एच ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एच ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
2: सरिया गार्डर टीए एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आई।
1: हाँ यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी।
2: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 02424601000।
3: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, होंडा मोटरसाइकिल जोधपुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पेंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जैमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनिए थी। होंडा जे टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाए 03201800003।
4: खुशखबरी जर्म वदन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट आई फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुम्मे छंछर आचर।

पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट ॿुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियो ॿारनि में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो। राब्ते लाइ 0301 91 8051।

0: और दुकान खोलियो तुम पर नया दा
1: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर एफ ई हले थो मु पंजो दुकान खोलियो तो एफ एम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब है जो एड बंद कराने ते दिल्ली नथी चवे
0: मुझे दुकान जी बेड हरंदी
2: हां दा कारोबारी मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए
0: रिस्त बुदा
1: हाफापुर एफ एम 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 0301-380-8347
3: मेहराबपुर के हो तो आवाज

0: अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अल हबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं।
1: बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
3: लोग कहते हैं मेरी स्किन की चमक है डायमंड जैसी। मेरी स्किन की डायमंड जैसी चमक है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम से, जो डीप क्लीन करे और दे 4 गुना ब्राइटनेस। चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम। लोग कहते हैं मेरी स्किन की चमक है डायमंड जैसी। मेरी स्किन की डायमंड जैसी चमक है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम से, जो डीप क्लीन करे और दे 4 गुना ब्राइटनेस। चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम।

0: इंसानी फितने ऐं दाइश ख़िलाफ़ कार्रवाई करे।
1: सदर आसिफ अली जरदारी सां वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ दीवानी सदर में मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, स्पीकर अयाज़ सादिक, वज़ीर मोहसिन नक़वी ऐं ॿिया बि मुलाकात में शरीक। मुलाकात में मुल्क जी मजमूई सूरतहाल, अफ़गानिस्तान बाबति मामलनि ऐं ख़िते जी तब्दील थींदड़ सूरतहाल ते ॻाल्हियूं। मारका हक़ जे शहीदनि ऐं पाक फ़ौज खे भेटा पेश कई वई। सदर आसिफ अली जरदारी चयो त विचोपर जी छिकताण ऐं सप्लाई चेन मुतासिर थियण बावजूद अवाम खे वध खां वध रिलीफ फराहम कयो वञे।
0: अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जंग के खात्मे बाबत ईरानी जवाब के नाकाबिले कबूल करार दींदे रद्द करे छो। ईरान से हमलन जो चिताव। समाजी वेबसाइट ते जारी कल बयान में डोनाल्ड ट्रंप है तो ईरान गेम खेली है पर हाँ खेस घनी डर न दिनी वी। ईरान जो रचायल यूरेनियम मलबे हेठा दफन है जै तई जल्द पहुंची वी। कॾहिं बि नाहे चयो त ईरान ख़िलाफ़ फ़ौजी कार्रवाई ख़तम थी वई आहे। कुझु हदफ़ रहियल आहिनि, ॿिनि हफ़्तनि अंदरि वधीक हमला करे सघूं था।
1: विचोभर में ईरान जूं कामयाबियूं ख़िते ऐं दुनिया में नए निज़ाम जो रस्तो।

0: लोग कहते हैं मेरी स्किन की चमक है डायमंड जैसी। मेरी स्किन की डायमंड जैसी चमक है मैं डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम से, जो डीप क्लीन करे और दे 4 गुना ब्राइटनेस। चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी है मैं डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम। लोग कहते हैं मेरी स्किन की चमक है डायमंड जैसी। मेरी स्किन की डायमंड जैसी चमक है मैं डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम से, जो डीप क्लीन करे और दे 4 गुना ब्राइटनेस। चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी है मैं डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम।
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरा पर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चौक पर एतमाद, अम्बा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरा पर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनी जे मुकरर कल रेट दे दस्तियाब है। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी है। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए, जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वने थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जैर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राप्ती जिलाए आसिम हुसैन आराई, 0307-359-2120।
2: खुशखबरी हानी अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज खां इशा जे नमाज ताईं आई हर आचर ते सुबह जो 9 वगे खां रात 8 वगे ताईं मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। वधीक राबते जे लाइ 0300-3583-569-0300-3855-69।

0: ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-4456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़ररु कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इर्शा करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इर्शाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 0320-18-00-003।
2: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
3: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंग सीमेंट रेती क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारियर दस्तियाब आहिनि।
2: हाणे अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालाणी।
3: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-3204-372 ऐं 0242-46-0100।

0: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
1: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
2: रابطے लाए हाकिम अली जिसकाणी
3: 03013992836
4: भाई मोहम्मद उमर गोरी 0315 1524
5: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी FM 94।

0: It's 9:30 PM. This time check is brought to you by
1: Heme Diamond Glow Bleach Cream. Kudrati jizan sa tayar kayal. Jekade kudrati nikhar. Saaf naram ay roshan chehro. Heme Diamond Glow Bleach Cream.
2: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम. इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार. सिर्फ दो दिन में डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो. डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो.
3: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमबी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ए सोम

0: पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट ॿुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारनि में कद जो न वधण मर्दनि ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-9196-8151
1: खुशखबरी हाणे अव्हां जे पंहिंजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन ऐं नहन एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर। वधीक राब्ते जे लाइ 0383-85-569
2: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 0320180003।

0: रोड में रापर
1: राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 0301-380-8373।
2: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94।

इश्क़ ये मेरा पेश पिया नहीं छोड़ में दाजिद जान मुआ ना क्या चाख्यारी काढ़ थिया मेहमान मुआ।

0: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GAFM
1: 94 चेहरो बेजान आई डल लगे थो हाने वक्त आहे चमकण जो है में डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम सा कुदरती जुजन सा तैयार कयल जेका दे कुदरती निखार साफ नरम आई रोशन चेहरो पहरी इस्तेमाल में फर्क महसूस करियो है में डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम तहां भी चमकायो पहजो चेहरो जीए हुजे हीरो है में डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम चेहरे जी असल चमक जो राज
2: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स एंड जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूला